0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है। स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हम सभी जानते हैं। कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी कदम कदम पर मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है, रास्ता चाहे जैसा हो, सफर रुकना नहीं चाहिए। जीवन चलने का नाम है। ये सिर्फ एक गीत की पंक्ति नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक खूबसूरत पैगाम भी है। कभी थकान महसूस हो तो थोड़ा ठहर जाएं, लेकिन हार मत मानिए। कभी कोई सपना अधूरा रह जाए तो नया रास्ता तलाशिए, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नई रोशनी लेकर आती है। याद रखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सफर जारी रखते हैं। गिरना कोई हार नहीं, गिरकर फिर उठना ही असली हिम्मत है। तो चाहे सुबह हो या शाम, अपने ख्वाबों की तरफ एक कदम रोज बढ़ाते रहिए। कल क्या होगा इसकी फिक्र मत कीजिए, आज को पूरी ईमानदारी और मुस्कान के साथ जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नाम नहीं चलते रहने का नाम है। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफर पर यकीन रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। हम इस दुनिया में आते हैं, कुछ रिश्ते बनाते हैं, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर एक दिन इस सफर से आगे निकल जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं आदमी मुसाफिर है। ये ख्याल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए जो पल आज हमारे पास हैं उन्हें शिकायतों में नहीं, मोहब्बत और मुस्कान में बिताइए। कभी हम मंजिल की तलाश में इतने बेचैन हो जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती देखना भूल जाते हैं। याद रखिए, असली जिंदगी सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में छुपी है जहां हमें लोग मिलते हैं, रिश्ते मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं और अनुभव हमारे दास्तान बन जाते हैं। इसलिए किसी से नाराजगी है तो आज ही दूर कर लीजिए, किसी को धन्यवाद कहना है तो देर मत कीजिए, और कोई सपना दिल में है तो उसकी तरफ एक कदम आज ही बढ़ाइए, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। हम सब इस दुनिया के मुसाफिर हैं, आते हैं, कुछ पल ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। तो सफर छोटा हो या लंबा, इसे प्यार, अच्छाई और खुशियों से भर दीजिए इस नगमे की तरह।

रफ़ी साहब और लता जी की इन्हीं आवाज़ों के साथ मुझे यानी फ़ेरोज़ को अब दीजिए बहुत सुहानी से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

नमस्कार, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:55 और करीब 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। सुबह के 6 बजने को है। अब समाचार थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने

0: लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।

पहले चिंतन। आज अटल बिहारी वाजपेयी की याद का दिन है। उनके अनुसार हम देश के लिए जीना सीखते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये था चिंतन। और अब सुनिए कार्यक्रम वंदन वार।

वंदन वार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का 282वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आप सुनेंगे कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, इसका भाग 16 प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत करता है कांचन प्रकाश संगीत। सुबह 7 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले पिसले गीत। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर।

आज के फनकार ये कार्यक्रम सुबह 9:30 पर प्रसारित होगा। आज ये कार्यक्रम पार्श्व गायिका हेमलता पर केंद्रित है। प्रस्तुतकर्ता हैं रमेश गोखले। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम में ये कार्यक्रम आज राखी पर केंद्रित होगा। समय रात्रि 9:30। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम होगा। आप सुनेंगे कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का भाग दो। संपादन सहायक रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबर खान। विविधा का प्रसारण समय दिन में 11:00। इसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्र भारती के अंतर्गत गीतकार गुलजार साहब के बारे में बातचीत। प्रस्तुतकर्ता है तेजश्री कांबली। दोपहर 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 आप सुनते हैं सुरीला सफर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम दोपहर 2:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गानों

कार्यक्रम मनचाहे गीत आप सुनेंगे दोपहर 3 बजे। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में आज सुनिएगा नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मौलियार के लिखे नाटक की हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है ये। रूपांतरकार और निर्देशक विनोद रस्तोगी। उजाले उनकी यादों के ये कार्यक्रम दोपहर बाद 4 बजे प्रसारित होगा। नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग पहला है ये। संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। संध्या 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन संध्या 6:35 पर और संध्या 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत महावीर चक्र एयर वॉइस मार्शल सेसिल विवियन पार्कर पर एक कार्यक्रम केंद्रित होगा। संपादन और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। संध्या 7:45 पर कार्यक्रम होगा इंद्रधनुष साज और आवाज। हवा महल में रात्रि 8 बजे हास्य नाटिका प्रसारित होगी कंगन। लेखक ब्रिजमोहन, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। रात्रि 9 बजे सुनिएगा आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार और छाया गीत। रात्रि 10 बजे प्रसारित होगा आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर ढलती जाए रात और रात्रि 11 बजे विविधा का पुनः प्रसारण।

झरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान, आज भाग 282।

अशोक वाटिका में हनुमान उस वृक्ष की डालियों पत्तों में छिपे बैठे हैं जिसके नीचे सीता बैठी हैं। रावण सज धज कर नारियों के समूह के साथ वहां आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो सीता को समझाता है कि हठ त्याग कर वे अपने को उसके सुपुर्द कर दें। वो मंदोदरी समेत सभी रानियों को उनकी दासी बनाकर रखेगा। किंतु जुगनुओं के प्रकाश से भला कमल खिल सकता है? सीता जी ये कहते उसकी भर्त्सना करती हैं कि वो रघुनाथ जी के वाणों से परिचित नहीं है और इसी कारण वो पापी निर्लज उनका हरण कर लाया है। अपमानित रावण क्रोध में कांपता कृपाण लेकर उनकी ओर बढ़ा ही था कि पटरानी मंदोदरी ने नीति की दुहाई देते हुए उसका हाथ रोक दिया। सीता को सोच विचार करने के लिए एक माह का समय देकर रावण वहां से विदा हो जाता है। रावण की दासियों में एक थी त्रिजटा, जिसे श्रीराम के चरणों में अथोर प्रीति थी। वो अन्य राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाती है जिसमें उसने एक वानर को लंका दहन करते देखा था। ये भी देखा था कि रावण के

0: ये था श्री रामचरित मानस गान का भाग 282।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, ये श्रृंखला वर्षा चौमासा, वर्षा काल में, वर्षा ऋतु में वर्षा से संबंधित, बरसात से संबंधित जो बंदिशें गाई जाती हैं, उनमें से कुछ बंदिशें शुभा जी ने हमें सुनाई, रागों के बारे में चर्चा की। इसी का एक पक्ष और भी है कि इस वर्षा काल में बहुत से त्यौहार आते हैं, व्रत त्यौहार, जिसे हम कहते हैं कि तीज त्यौहार। तो तीज के बारे में तो बातचीत हो गई, लेकिन और भी कई त्यौहार हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। शुभा जी, कृष्ण जन्माष्टमी का जिक्र हमने पहले किया
1: जी
0: था,
1: हाँ, जी हाँ।
0: और नागपंचमी भी होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और रक्षाबंधन भी तो होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो क्या इन सभी त्योहारों को लेके अवश्य ही पद होंगे?
1: जी बिल्कुल।
0: तो
1: कृष्ण मंदिरों में तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है उसके काफी पद मिलते हैं। और एक प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं, बल्कि उन मंदिर के साहित्य में तो पद के साथ साथ ये भी मिलता है कि किस राग में उसे गाना उचित होगा। तो सारंग में ये इस

0: चीज़ को गाना गाने का प्रयास है और यही उन्होंने वैसे निर्धारित भी किया है। तो बोल इस प्रकार है, राखी राखो सुंदर कर वर, सुंदर कर पे हाथ पे राखी रखिए, राखी राखो सुंदर कर वर, तिथि पुण्यो शुभ दिवस, शुभ दिवस तिथि पुण्यो शुभ दिवस सलून्यो झूलो मुदित परस्पर। देखो प्रिया अलौकिक भूषण में गुथियो देके मुक्ता लर, मतलब
1: मुक्ता की लड़ी जो मोतियों की लड़ी है,
0: लड़ी उन्होंने गुथी है राखी में। श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, और वो सुंदर श्याम भी और गौर भी, राधा जी गोरी और श्री कृष्ण श्याम, श्याम गौर पहुंचन में कैसी लागत परम मनोहर, लटकत रुचिर पाठ के फुंदना कमल नाल मनु मधुप लगे गर, झूलन माही विलोलत ज्यो ज्यो देखी हसत दोऊ हर हर, लय हो झगर झगर इत उतते रहस बधाई मृदु मुसकन तर, वृंदावन हित रूप बल गई रमकन लाग्यो शोभा झर। ऐसा रक्षाबंधन का पद मिलता है।
1: इसमें भी ये राधा और कृष्ण झूल रहे हैं, तो कहा जाए तो ये झूला ही है, लेकिन इसमें रक्षाबंधन की बात आई
0: है, विशेष उल्लेख है रक्षाबंधन का, और कैसी राखी बनी है वो भी।
1: जी, और ये भी मैंने सुना कि इसमें राधा और कृष्ण दोनों ही के हाथों में राखी है बंधी हुई। तो जो राखी प्रतीक हम कहते हैं कि भाई को पहनाती है, बांधती है बहन, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के लिए एक
0: वो भी है। और वैसे कुछ समुदाय ऐसे हैं जहाँ पे भाई के साथ साथ भाभी को भी लूम्बा नाम की एक ऐसी बड़ी सुंदर सी एक लटकन सी होती है, वो उनकी उनके कंगन में या चूड़ी में बांधी जाती है, ऐसी भी प्रथा होती है। उसे कुछ लोग लूम्बा कहते हैं, कुछ और नाम से भी कहा जाता है, लेकिन भाभी को भी उनके सम्मान के लिए अगर भाई को राखी बांध रहे हैं तो लूम्बा भाभी को भी बांधा जाता है।
1: जी, तो इसी तरह से ये राधा जी और कृष्ण मुरारी, इनके हाथों में राखी बंधी है। सुनाइए ना पद।

0: शुभा जी, ये रक्षाबंधन का तो पद, ये रचना हमने सुनी, लेकिन मूलतः कृष्ण जब तक जन्म नहीं लेंगे तब तक तो ये सब
1: बिल्कुल।
0: तो जन्माष्टमी का भी बड़ा महत्व इस वर्षाकाल में होता है, क्योंकि उसी समय में कृष्ण जी का जन्म हुआ
1: जी। लेकिन आपको एक बधाई का पद सुनाना चाहती हूँ मैं। आज बधाई मंगल गावत, जायो जसुमति लाल मनोहर, सुनी सुनी सब सच पावत। अब इसमें देखिए कि कितने कितने प्रकार के साज बज रहे हैं। ताल मृदंग दमामे गोमुख, भेरी ढोल बजावत, आनंद बरसो सब ब्रज हर्षो, जहां तहाते धावत। दौड़ दौड़ के आ रहे हैं लोग, सब बाजे गाजे बज रहे हैं। हाथन भेंट ललित गति कामिनी, नंद सदन में आवत, निरख निरख मोहन सोहन मुख, फूलत नयन सिरावत। आंगन नाचत गोप छबीले, अद्भुत रंग बढ़ावत, लय लय छिरकत दूध दही घृत, हरदी कीच मचावत। तो सब चीजें जो है जो चल रही हैं उनसे तो कीचड़ हो गया पूरा, इतनी इतना दूध दही हल्दी इत्यादि डाला गया। रोरी तिलक दुकूल सुभूषण, नंद सबन पहरावत। और जो आते हैं बधाई देने के लिए उनको खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं नंद राय, तो वो भी उनका सम्मान करने के लिए रोली का तिलक करते हैं, उनको भूषण आदि देते हैं। जस गावन को हित दामोदर, दास बधाई पावत। वाह।

0: श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार। संगीत सरिता में अभी आपने हमारी श्रृंखला वर्षा चौमासा की 16वीं और आखिरी कड़ी सुनी। प्रस्तुत कर रही थी प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल। हारमोनियम पर संगत सुधीर नायक की थी। तबले पर संगत अनीश प्रधान की। ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन। तकनीकी सहायिका विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उज्जैन। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

महाकाल वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सुबह की इस अमृत वेला में आइए सर्वप्रथम बाबा महाकाल को नमन करते हैं और सुनते हैं शिव भक्ति से सराबोर भजन।

ये था हमारा कार्यक्रम महाकाल वंदन और आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम उज्जैनी आरजे विद आरजे देशना जैन।

सुबह 9:30 पर होगा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स, 10 सुनिएगा आपकी फरमाइश और 11 होगा कार्यक्रम रंग तरंग।

12:05 पर आप सुन सकेंगे यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफ़र, 2 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत।

2:30 पर सुनिएगा विविधा, 3:30 पर नाट्य तरंग, 4:00 आप सुन सकेंगे पिटारा, उजाले उनकी यादों के।

शाम 5 बजे होगा युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे हमसे जुड़िएगा भजन संध्या में और 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 7:10 होने को है। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम थोड़ी ही देर में भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कल देश भर में धूमधाम से मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जिलों में सजा काट रहे कुल 115 बंदियों को रिहा किया गया और जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। पहली बार इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ। इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज के दौर का भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर कल रविन्द्र भवन में आजादी का महापर्व कार्यक्रम में कहा कि आज के दौर के भारत की सेना देश के दुश्मनों को उनकी सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण संभव हुआ है।
3: दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत दुनिया के सामने अपने सामर्थ्य, पुरुषार्थ और पराक्रम की नई नई कीर्ति गाथाएं लिख रहा है। हमें आनंद आता है देश के अंदर देश का ऐसा नेतृत्व की आवश्यकता वर्षों बाद हमारी आस पूरी हुई। जब हमारी बॉर्डर पर बॉर्डर के अंदर घुसकर होने वाली हलचल में दुश्मन कोई षड्यंत्र लगाए तो आज का

0: ओवर का भारत और भारत की सेना देश के दुश्मनों को दुश्मनों की सीमा के अंदर जाकर मारने की हिम्मत रखती है, ये वर्तमान का भारत।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नक्सल मुक्त होने के बाद की स्वतंत्रता की वर्षगांठ विशेष आनंद का कारण बनी है। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रख्यात गायिका पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति ने देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति भी दी। प्रदेश शासन जेल विभाग की समय पूर्व रिहाई नीति के तहत कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कुल 115 बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें 110 पुरुष बंदी एवं 5 महिला बंदी शामिल हैं। ये रिहाई जेल में निरुद्ध रहने के दौरान बंदी के अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट 2026, सीएसआईआर नेट और ICAR की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अनंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान माई भारत NSS स्वयंसेवकों से संवाद किया। उन्होंने सामाजिक सेवा में स्वयंसेवकों के योगदान की सराहना की और उन्हें विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को अपने अनुभव, विचार और आकांक्षाएं साझा करने का अवसर भी मिला। इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए सार्थक अवसर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। इस कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस समारोह में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामूहिक भागीदारी की भावना देखने को मिली। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले पूर्व में फिजी से शुरू होकर पश्चिम में अमरीका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई थी। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी मनाया गया। इस रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस प्रदेश में सेवा, सुरक्षा और सुशासन की असली रीढ़ है। मध्य प्रदेश करीब 35 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ है। स्वाधीनता दिवस 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद मुक्त भारत का संकल्प लिया था। इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश सरकार कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक, सराहनीय सेवा पदक, सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति के होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा पदक एवं सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से अलंकृत पुलिस और होमगार्ड्स के 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण है। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने बताया कि स्टॉक का मिलान करने के लिए 14 अगस्त की शाम से उर्वरक विक्रय 15 एवं 16 अगस्त को अवकाश के दिनों में बंद किया गया है। मिलान का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जो 16 अगस्त की शाम तक पूरा हो जाएगा तथा 17 अगस्त से खाद का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आगामी 17 अगस्त से जितनी खाद चाहिए उतनी मिल सकेगी। साथ ही आगामी 20 अगस्त से हर किसान, हर घर, हर खेत खाद अभियान भी प्रारंभ हो रहा है, जिससे रबी की खाद इसी माह से किसानों को मिलना आरंभ हो जाएगी। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं ही शेष हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण वास्तविक रूप से प्रभावित सभी परिवारों के लिए पारदर्शी, न्यायसंगत मुआवजे और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पुरुष क्रिकेट में भारत आज गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 288 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाएगा। कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त पड्डिकल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। राजा भोज मल्टीक्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग के तीसरे संस्करण का समापन आज भोपाल

के बोट क्लब में होगा। समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय रैंकिंग तय की जाएगी। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने से जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में कुछ इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं अगले 4 दिन तक जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग में सिस्टम का ज्यादा असर रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को नर्मदापुरम, छतरपुर और उमरिया में अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया था। वहीं जबलपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, मंडला, रिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, पन्ना, टीकमगढ़, रीवा, मोगन, सीधी और सिंगरौली में भारी बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में बाघिन MT4 ने शावकों को जन्म दिया है। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने खुशी जताते हुए कहा है कि बाघ शावकों का जन्म प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों का सुखद परिणाम है। खंडवा, आगरमालवा, गुना, नीमच, धार, डिंडोरी और झाबुआ तथा सागर सहित प्रदेश के सभी जिलों में कल स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नर्मदापुरम जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों की शुद्धता को लेकर विशेष अभियान के तहत पिछले 7 दिनों में करीब 1426 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:20 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

सुप्रभात उज्जैन वासियों, आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर से भक्ति गीत के साथ।

0: कल नागपंचमी एवं महाकाल सवारी दोनों पर्व एक साथ होने के कारण यातायात व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बारे में जानकारी सुनते हैं श्री विक्रम सिंह परिहार, पुलिस उप अधीक्षक यातायात उज्जैन से।
1: 17 अगस्त को नागपंचमी और श्री बाबा महाकाल की सवारी दोनों एक ही दिन है। इस अवसर पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और उसी अनुपात में जो हजारों की संख्या में वाहनों के आने की संभावना है। इसलिए जो सुचारू यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा जो डायवर्सन एवं यातायात प्लान बनाया गया है वो 3 चरणों में बनाया गया है, जिसमें प्रथम चरण में जो है भारी वाहनों का डायवर्सन तपोभूमि से रहेगा। जिन वाहनों को जो है उन्हेल, नागदा और आगर की तरफ जाना है वो बड़नगर बाईपास का उपयोग करते हुए धर्मबड़ला और चंदेसरी से होकर के और जा सकते हैं। इसके बाद जो है द्वितीय चरण में जो है बसों का, जो यात्री बसें रहेंगी उनका डायवर्सन रहेगा। जो इंदौर की तरफ से जो यात्री बसें आ रही हैं उनको इंजीनियरिंग कॉलेज से पाइप फैक्ट्री से भरतपुरी होते हुए नानाखेड़ा बस स्टैंड की तरफ भेजा जाएगा। इसके अलावा जो यात्री बसें जो तीर्थयात्रियों को लेकर के आती हैं वो बसें जो है वो आस्था से सिंहस्थ बाईपास होकर के मोहनपुरा से और शंकराचार्य होते हुए कार्तिक मेला मैदान के लिए भेजी जाएंगी। इसके बाद जो है जो तृतीय चरण का जो प्लान है उसमें 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों के लिए है, जिसमें इंदौर और देवास की तरफ से जो आने वाले जो 4 पहिया और 2 पहिया वाहन है वो तपोभूमि से इंजीनियरिंग कॉलेज से आस्था से हरी फाटक चौराहा, जंतर मंतर, लाल पुल टर्निंग होते हुए पहले जो है कर्कराज पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे, जो कि सीमित संख्या में वाहनों के लिए पार्किंग है। इस पार्किंग के भर जाने पर जो है इन वाहनों को हरी फाटक पर जो पार्किंग है, मन्नत गार्डन पार्किंग और इंपीरियल की जो पीछे की पार्किंग है वहां पर पार्क कराया जाएगा। यदि ये भी पार्किंग जब भर जाएगी तो इन वाहनों को जो इंदौर और देवास की तरफ से आ रहे हैं उनको आस्था से डाइवर्ट करके सिंहस्थ बाईपास से चिंतामन ब्रिज और मोहनपुरा ब्रिज, मुरलीपुरा, शंकराचार्य चौराहा होते हुए कार्तिक मेला मैदान की पार्किंग में जाकर के पार्क कराया जाएगा, जहां से पैदल गुरुद्वारा मार्ग से नरसिंह घाट होते हुए मंदिर दर्शन के लिए जा सकेंगे। फिर इसके बाद जो है जो वीआईपी पास जो दिए गए हैं, जो वीआईपी पास या 300 रुपए का जो शीघ्र दर्शन व्यवस्था की गई है, इनके जो जाने की जो प्रवेश द्वार जो रखा गया है वो हरसिद्धिपाल से रखा गया है। हरसिद्धिपाल पर चूंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है इसलिए यहाँ पर भी जाने वालों को जो है कर्कराज और कार्तिक मेला मैदान में ही अपना वाहन पार्क करना पड़ेगा। शहर से जो श्रद्धालुगण जो दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, चूंकि पार्किंग सीमित होने के कारण जो है वो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का उपयोग करके आए, अपने स्वयं के वाहन से ना आए। और वो जो है लोहा पुल, दौलतगंज से लोहा पुल से महाकाल घाटी, गुदरी से जो हरसिद्धिपाल के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते का पैदल

0: उपयोग करते हुए वहां पर जा सकेंगे। इसके अलावा जो है नरसिंह घाट से हरसिद्धि चौराहा और हरसिद्धि पाल होते हुए भी वो इस प्रवेश मार्ग पर पहुंच सकते हैं। अब इसी प्रकार जो है बाबा महाकाल की सवारी भी है सोमवार को, और अंदर के जो मार्ग हैं उनमें जो है आज से ही मतलब 16 तारीख की दोपहर 12 बजे से ही वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें मुख्य मार्ग जो है हरिफाटक चौराहा से हरिफाटक डी बेगमबाग महाकाल घाटी, और इसी प्रकार दौलतगंज से तोपखाना और लोहा पुल महाकाल घाटी वाला मार्ग ये भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जो है आपके तेलीवाड़ा से जो टंकी मार्ग से जो छतरी तरफ जो जा रहा मार्ग ये भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा केडी गेट से कमरी मार्ग प्रतिबंधित रहेगा, चक्रतीर्थ से दानी गेट मार्ग भी प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार जो अंदरूनी मार्ग है जहां जो कि सवारी मार्ग है और जो कि मैंने आपको इस प्लान के तहत जो मार्ग बताए हैं, असुविधा से बचने के लिए इन मार्गों पर कृपया वाहन लेकर के आप न जाएं। और यातायात पुलिस एवं प्रशासन की आपसे ये अपील है कि चूंकि वर्तमान में उज्जैन शहर में निर्माण कार्यों के चलते और पार्किंगों के निर्माण होने के कारण पार्किंग की संख्या सीमित है, इस कारण से आप जो है सार्वजनिक जो वाहन प्रणाली है परिवहन प्रणाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके दर्शन के लिए आने का कष्ट कर। धन्यवाद।
1: तो ये थी नागपंचमी और महाकाल सवारी के अवसर पर यातायात व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आप सभी से भी अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा जारी यातायात निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान धैर्य और सहयोग बनाए रखें। आइए अब जानते हैं कुछ खबरें उज्जैन के समाचार पत्रों से। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को बाबा महाकाल की भस्म आरती विशेष श्रृंगार के साथ संपन्न हुई। तड़के 3 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद पुजारियों ने गर्भगृह में विराजित देवी देवताओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का दूध दही घी शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। प्रथम घंटाल बजाकर श्री हरिओम का जल अर्पित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा महाकाल को तिरंगा स्वरूप का त्रिपुण अर्पित कर विशेष श्रृंगार किया गया। उन्हें रजत मुकुट बिलपत्र मुकुट और रुद्राक्ष की माला धारण कराई गई। रजत की मुंडमाल और सुगंधित पुष्पों की माला से बाबा का श्रृंगार किया गया। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उज्जैन में मुख्य समारोह शनिवार को दशहरा मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। इसके बाद प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान के बाद परेड की सलामी ली। समारोह में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं और शहरवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, DIG नवनीत भसीन, SP प्रदीप शर्मा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट, हार्श फायर, राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गायन हुआ। इसके बाद स्कूली विद्यार्थियों ने PT का प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता सेनानियों, कारगिल शहीदों के परिवारों, लोकतंत्र सेनानियों और देहदान करने वाले व्यक्तियों के परिजनों का सम्मान किया गया। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण भी हुआ। साथ ही पूरे शहर में भी विभिन्न सरकारी निजी संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों में भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। अगली खबर उज्जैन के विकास की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी की तर्ज पर उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर नमो घाट विकसित किया जा रहा है। यहां भगवान श्री कृष्ण की 182 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अनुसार प्रतिमा का निर्माण हरी फाटक बाईपास स्थित यूनिटी मॉल के पीछे शिप्रा नदी के किनारे प्रस्तावित है। प्रतिमा के साथ घाटों का भी विकास किया जाएगा ताकि क्षेत्र को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। प्रतिमा का बाहरी ढांचा कांस्य और अंदरूनी संरचना स्टेनलेस स्टील की होगी।

नमो घाट पर नियमित रूप से शिप्रा आरती और पूजन की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र में करीब 260 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण भी जारी है। मॉल में होटल्स, कैफे, कॉन्फ्रेंस हॉल, देश विदेशों के उत्पादों के लिए स्थान प्रस्तावित है। घाट, प्रतिमा और मॉल को एक साथ विकसित कर उज्जैन को धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में नई पहचान देने की योजना है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय काव्योत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश लेखक संघ उज्जैन द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार 14 अगस्त को प्रेस क्लब में राष्ट्रीय काव्योत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि मोहन भदौलिया ने की। मुख्य अतिथि श्री कृष्ण जोशी, सारस्वत अतिथि प्रसिद्ध मालवी कवि डॉ. शिव चौरसिया, विशेष अतिथि प्रेमचंद सृजन प्रीट के निदेशक मुकेश जोशी तथा विशिष्ट अतिथि हेमराज राठौर एवं रीवा से पधारी कवित्री मनीषा प्रधान रही। आयोजन में उज्जैन सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक वरिष्ठ एवं युवा कवियों ने देशभक्ति, साहित्य और समकालीन सरोकारों से जुड़ी रचनाओं का पाठ किया। कार्यक्रम के संयोजक संदीप सृजन तथा सचिव डॉ. हरीश कुमार सिंह रहे। ये थी उज्जैन की कुछ खबरें समाचार पत्रों से। आइए फिर से जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन में और सुनते हैं एक सुंदर सा देशभक्ति गीत।

15 अगस्त बीत गया, तिरंगा अपनी जगह पर है, देशभक्ति के गीतों की गूंज कुछ धीमी हो गई है, लेकिन क्या हमारी देशभक्ति भी आज के साथ धीमी पड़ जानी चाहिए? ज़रा सोचिए, क्या देश से प्रेम सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित है? क्या देशभक्ति का अर्थ केवल तिरंगा लगाना, राष्ट्रगान गाना और सोशल मीडिया पर देशभक्ति की पोस्ट साझा करना है? अगर ऐसा है तो फिर बाकी के 362 दिन किसके हैं? दरअसल देशभक्ति कोई एक दिन मनाया जाने वाला उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। सड़क पर कचरा न फैलाना, नियमों का पालन करना, ईमानदारी से अपना काम करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना, ये भी देशभक्ति है।

तो आइए 15 अगस्त के अगले दिन एक संकल्प ले। तिरंगा भले ही हर दिन हाथ में न हो, लेकिन तिरंगे का सम्मान हमारे व्यवहार में हमेशा दिखाई दे। देश के लिए सीमा पर खड़ा जवान जिस भावना से अपना कर्तव्य निभाता है, उसी भावना से हम अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी और जिम्मेदारी निभाएं। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़े, युवा अपने हुनर को देश के विकास में लगाए, कर्मचारी अपने काम को पूरी निष्ठा से करें और नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। क्योंकि देश केवल नक्शे पर बनी सीमाओं का नाम नहीं है, देश हमसे, हमारी सोच से, हमारे रोज़मर्रा के छोटे छोटे कर्मों से बनता है। 15 अगस्त हमें आज़ादी का उत्सव देता है, लेकिन उसके अगले 364 दिन हमें याद उस आज़ादी की जिम्मेदारी निभाने का अवसर देते हैं। आइए देशभक्ति को तारीख से निकालकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि देश को हमसे सिर्फ एक दिन का जोश नहीं, पूरे साल का जिम्मेदार योगदान चाहिए।

16 अगस्त एक ऐसी तारीख जब देश की स्मृतियों में एक आवाज़ फिर गूंजती है, ओज से भरी लेकिन संवेदनाओं से भीगी हुई। यही वो दिन है जब वर्ष 2018 में भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता, कुशल राजनेता और संवेदनशील कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी को खोया था। अटल जी की पहचान केवल राजनीति के गलियारों तक सीमित नहीं थी, वे उन विरले नेताओं में से थे जिनके शब्द विरोधियों को भी सुनने के लिए विवश कर देते थे और जिनकी भाषा में राजनीतिक दृढ़ता के साथ मानवीय गरिमा भी दिखाई देती थी। संसद में उनका वक्तव्य हो या कविता की पंक्तियाँ, हर जगह शब्द उनके व्यक्तित्व का विस्तार बनते थे। अटल जी का राजनीतिक जीवन भारत के परिवर्तन और निर्माण की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा। प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूर संचार तथा बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहलें हुई। लेकिन अटल जी की राजनीति को केवल उपलब्धियों की सूची में नहीं बांधा जा सकता। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी संवाद। वे मानते थे कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। विपक्ष के प्रति सम्मान, कठिन परिस्थितियों में भी बातचीत का रास्ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की उनकी भावना ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र में एक अलग स्थान दिया। उनके भाषणों में राष्ट्र की चिंता थी तो उनकी कविताओं में आम इंसान के सुख दुख की गूंज और राष्ट्र प्रेम था।

अटल जी आज भी केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों और विचारों का जीवंत अध्याय है। उनकी कविताओं में संघर्ष से हार न मानने का साहस है, निराशा के बीच उम्मीद है और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहने का संकल्प है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि राजनीति में ऊंचाई केवल पद से नहीं, बल्कि विचारों की उदारता और आचरण की गरिमा से मिलती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए उन्हें श्रद्धांजलि, न केवल श्रद्धांजलि न दे, बल्कि उनके जीवन से राष्ट्र सेवा, लोकतांत्रिक मर्यादा, संवाद और सकारात्मक सोच की प्रेरणा ग्रहण करें। आकाशवाणी परिवार की ओर से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि।

15 अगस्त हमें देशभक्ति का उत्सव मनाने की प्रेरणा देता है और 16 अगस्त हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र सेवा का संकल्प किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। यही संकल्प अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में भी दिखाई देता है। शब्दों की शक्ति लोकतांत्रिक मर्यादा

एकता, संवाद की संस्कृति और राष्ट्र हित के प्रति अटूट समर्पण के रूप में। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण करते हुए आइए देशभक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित न रखें, बल्कि अपने कर्तव्यों, अपने व्यवहार और अपने कर्मों में उतारें। तिरंगे का सम्मान केवल उसे सलाम करने से नहीं, बल्कि उस भारत को बेहतर बनाने में है जिसका सपना हमारे राष्ट्र नायकों ने देखा था। अटल जी की स्मृति और विचार हमें इस जिम्मेदार, संवेदनशील और सशक्त भारत की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे हैं। श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को

0: सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों

0: का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत

0: सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग। 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान। कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार।

0: बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said, the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
3: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years

दोस्तों आज 16 अगस्त है, यानी हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता का जन्मदिन जिसने अपने अभिनय में शाही ठाट, रोमांस, कॉमेडी और गंभीरता हर रंग को जगह दी है। नाम है सैफ अली खान। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली में हुआ। क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी और अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ के लिए सिनेमा और खेल दोनों ही विरासत का हिस्सा रहे। हालांकि फिल्मी परिवार से आने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान केवल पारिवारिक नाम के सहारे नहीं बनाई। शुरुआती वर्षों में उन्हें एक युवा रोमांटिक हीरो की छवि मिली, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने चुनावों से ये साबित किया कि अभिनय की दुनिया में टिकने के लिए सिर्फ लोकप्रियता नहीं बल्कि प्रयोग और निरंतरता भी ज़रूरी है। उनकी यात्रा में उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर दौर में उनके व्यक्तित्व और अभिनय को एक नया आयाम दिया। आज सैफ को एक ऐसे कलाकार के रूप में देखा जाता है जिसने मुख्य धारा के सिनेमा से लेकर चुनौतीपूर्ण और विविध भूमिकाओं तक अपनी अलग पहचान बनाई।

सैफ अली खान ने 1993 में फिल्म परंपरा से अपनी फिल्मी सफ़र की शुरुआत की। शुरुआती दौर आसान नहीं था और उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ा। उस समय उनकी छवि एक रोमांटिक और चॉकलेटी हीरो की थी, लेकिन उन्होंने खुद को उसी दायरे में सीमित नहीं रखा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कच्चे धागे और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस को मजबूत किया। खास तौर पर हम साथ साथ हैं की पारिवारिक दुनिया में उनका सहज अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसी दौर में सैफ ने ये समझना शुरू किया कि एक अभिनेता के लिए अलग अलग तरह के किरदारों को अपनाना कितना ज़रूरी है। शुरुआती फिल्मों की सफलता ने उन्हें पहचान ज़रूर दी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने इसी पहचान को बदलने का साहस भी दिखाया। यही बदलाव उनके करियर की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक बना और सैफ धीरे धीरे एक अधिक परिपक्व अभिनेता के रूप में सामने आए। आइए सुनते हैं अगला गीत हम साथ साथ फिल्म से।

साल 2001 की दिल चाहता है सैफ के करियर की उन फिल्मों में रही जिसने उनकी स्क्रीन इमेज को नया रूप दिया। इस फिल्म के सिर ने उन्हें एक सहज मजाकिया और भावनात्मक युवा के रूप में नई पहचान दी। इसके बबाद कल हो ना हो, तुम हो हम तुम और सलाम नमस्ते जैसी फिल्मों में उन्हें आधुनिक आत्मविश्वासी और अपने समय के शहरी किरदारों को पर्दे पर उतारा। खास बात ये रही कि सैफ की कॉमेडी में बनावटीपन कम और स्वाभाविकता ज़्यादा दिखाई देती थी। उनके संवाद अदायकी में एक खास शहरी अंदाज, टाइमिंग, हल्की सी शरारत नज़र आती थी। हम तुम में रिश्तों और प्रेम के बदलते समीकरण के बीच उनका किरदार दर्शकों के करीब पहुंचा। इस दौर ने सैफ को सिर्फ लोकप्रिय अभिनेता ही नहीं बनाया बल्कि ये भी दिखाया कि वो बदलते दौर के सिनेमा और बदलती युवा मानसिकता को स्क्रीन पर प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।

सैफ की असली अभिनय विविधता तब सामने आई जब उन्होंने चुनौतीपूर्ण किरदारों का चुनाव शुरू किया। परिणीता में उनके शेखर के किरदार ने संवेदनशीलता, प्रेम और भावनात्मक द्वंद्व को सामने रखा। वहीं ओंकारा में लंगड़ा त्यागी का किरदार बिल्कुल विपरीत रंग लेकर आया। भाषा, हाव भाव, चाल ढाल और संवादों के स्तर पर ये भूमिका उनके लिए एक बड़ा बदलाव थी। खासकर ओंकारा ने ये साबित किया कि सैफ केवल रोमांटिक या कॉमेडी भूमिकाओं तक सीमित अभिनेता नहीं है। उन्होंने नकारात्मक और जटिल चरित्र को भी पूरी गंभीरता से निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और उनके अभिनय करियर को एक नई दिशा मिली। यहीं से सैफ के भीतर के प्रयोगशील अभिनेता की तस्वीर और स्पष्ट हुई। उन्होंने साबित किया कि कभी कभी अभिनेता की सबसे बड़ी

सफलता अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने में होती है। आइए सुनते हैं परिणीता फिल्म से सैफ अली खान की मूवी से अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सैफ की

फिल्मोग्राफी में बीइंग साइरस ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस फिल्म में उन्होंने एक जटिल और शांत स्वभाव वाले किरदार को जिस सूक्ष्मता से निभाया, उसने उनके अभिनय की दूसरी परत दर्शकों के सामने रखी। ये वो दौर था जब सैफ बड़े स्टार की पारंपरिक छवि से हटकर कंटेंट और किरदार की गहराई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। फिर आई लव आजकल। इस फिल्म में उन्होंने प्रेम, करियर और रिश्तों की बदलती भाषा को नए अंदाज में प्रस्तुत किया। फिल्म में आधुनिक रिश्तों की उलझन और भावनात्मक दूरी को उनका किरदार सहजता से व्यक्त करता है। सैफ के करियर की खासियत ये रही कि उन्होंने व्यावसायिक सिनेमा के साथ प्रयोगधर्मी भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाए रखा। कभी वो हल्की फुल्की कॉमेडी के जरिए दर्शकों को हंसाते हैं, तो कभी गंभीर और जटिल किरदार के जरिए उन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें समकालीन हिंदी सिनेमा के अलग अलग दौरों से जोड़ती रही है।

सैफ के अभिनय सफर में पुरस्कारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम तुम के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है, क्योंकि ये उनके अभिनय की परिपक्वता को दर्शाता है और लोकप्रिय सिनेमा में उनकी प्रभावी उपस्थिति की पहचान भी है। इसके अलावा उन्हें कई फिल्मफेयर पुरस्कार और नामांकन मिले, जिनमें ओंकारा जैसी फिल्मों के लिए मिली आलोचनात्मक सराहना विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। वर्ष 2010 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। हालांकि किसी अभिनेता की पहचान केवल पुरस्कारों से तय नहीं होती, लेकिन ये सम्मान उनके लंबे फिल्मी सफर में हासिल उपलब्धियों को ज़रूर रेखांकित करते हैं। सैफ के मामले में दिलचस्प बात यह है कि उनके पुरस्कारों का सफ़र उनकी भूमिकाओं की विविधता के साथ आगे बढ़ता दिखाई देता है। एक तरफ लोकप्रिय फिल्मों के सहज और मनोरंजक किरदार है, तो दूसरी तरफ ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने उन्हें गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। आइए सुनवाते हैं आपको हम तुम फिल्म से अगला गीत।

0: झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले तो पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरकर समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है
0: तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए, कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा, सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। तुम इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
2: बड़े पर्दे के साथ साथ सैफ ने डिजिटल माध्यम को भी अपनाया और सीक्रेट गेम्स के जरिए ओटीटी की दुनिया में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सीरीज में सरताज सिंह का किरदार उनके अब तक के कई फिल्मी किरदारों से अलग था। एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनके अभिनय में थकान, जिम्मेदारी, असमंजस और दृढ़ता जैसे कई भाव एक साथ दिखाई देते हैं। खास बात यह रही कि डिजिटल माध्यम पर आने के बाद भी सैफ ने अपनी स्टार इमेज को कहानी पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने किरदार की जरूरत के अनुसार अपने अभिनय को नियंत्रित रखा। सीक्रेट गेम्स की सफलता ने यह भी दिखाया कि दर्शक कलाकारों को केवल बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि लंबे और जटिल नरेटिव में भी स्वीकार करने लगे हैं। सैफ के करियर की ये यात्रा बदलते मनोरंजन माध्यमों के साथ उनके अनुकूलन को दर्शाती है। हिंदी सिनेमा और ओटीटी दोनों में सक्रिय रहकर उन्होंने अपनी पीढ़ी के उन कलाकारों में जगह बनाई जिन्होंने बदलते समय के साथ अभिनय की भाषा भी बदली।

0: on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, Member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
1: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था, अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का। और ऐसा तो नहीं है, तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासाई क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता की जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत

0: होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए, तो कम्युनिटी लेवल पे हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करे और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रो बोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ, उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले क्योंकि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं। दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी। लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है। हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा। वो बहुत ज्यादा घबराते हैं इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आते हैं हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो, अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहां पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं। मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ। सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं। साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहां पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं, ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5।

शिप में, और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस, अगर वो चाहती है लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, तो उसको बहुत इजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से फ्लैग करा देते हैं, उसके द्वारा वहां पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारी वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, वो पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में है, या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल जाती हैं। मैं आपको सब बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं, ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकती है, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है, वहां पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए, जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी। और ये चीज हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में

0: किसी भी प्रकार का कोई सारा पेरेंट स्टाफ रहता है तो सर्वाइवर्स बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती है। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देते हैं जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत कीजिएगा कैसी, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: You had been listening to a talk on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanjay Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: अभी आपने सुना Department of Justice द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 8। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और आप सुन रहे हैं

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 9:31 हो चुके हैं और अब वक्त है कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

दोस्तों, कभी कभी किसी की मौजूदगी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देती है कि उसके बिना हर खुशी अधूरी लगने लगती है। ऐसी ही सच्ची मोहब्बत का एहसास लिए ये गीत फिल्म सिम्बा से है। राहत फतेह अली खान, तनिष्क बागची और असीस कौर की आवाज़ों ने इसे बेहद भावुक रंग दिया है। आइए सुनते हैं दिल छू लेने वाला ये खूबसूरत नगमा।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: रिश्तों में सात रंग तभी उतरते हैं जब भरोसा, अपनापन और बे इंतहा प्यार साथ हो। फिल्म एनिमल का ये गीत अपनी गहराई और भावनाओं के कारण हर दिल तक पहुंच गया। अरिजीत सिंह की आवाज़, श्रेयस पुराणिक का संगीत और सिद्धार्थ गरिमा के शब्द इसे खास बनाते हैं। सुनिए प्यार के हर रंग से सजा ये खूबसूरत गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा,
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: नई शुरुआत जब प्यार और विश्वास के साथ होती है तो हर रिश्ता और भी मजबूत बन जाता है। फिल्म पैडमैन का ये मधुर गीत शादी के खूबसूरत एहसास को बेहद सादगी से बयां करता है। अरिजीत सिंह की आवाज़, अमित त्रिवेदी का संगीत और कौसर मुनीर के बोल इसे यादगार बनाते हैं। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: कुछ नजरें ऐसी होती है जो बिना कुछ कहे दिल की पूरी कहानी सुना देती है। फिल्म पद्मावत का ये गीत प्रेम की उसी नजाकत और खूबसूरती को बयां करता है। नीति मोहन की मधुर आवाज, संजय लीला भंसाली का संगीत और सिद्धार्थ गरिमा के बोल इसे और भी बेहद यादगार बनाते हैं। सुनिए ये मनमोहक प्रस्तुति।

अभी आपने सुना रेड 2 फिल्म का ये गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। कभी कभी कुछ रिश्तों को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस होता है। कुछ मुलाकातें यूं ही नहीं होती, जैसे कोई पुराना रिश्ता नए रूप में सामने आ गया है। इसी खूबसूरत एहसास को अपने सुरों में समेटे अगला गीत रिश्तों की उसी अनदेखी डोर की कहानी कहता है।

कुछ रिश्ते सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे में पूरी तरह समा जाने का एहसास है। जब दिल किसी के लिए धड़कता है तो उसकी खुशी अपनी और उसके दर्द भी अपना लगता है। आइए सुनते हैं अगला गीत।

इसी के साथ ये था हमारा बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं FM 102.5 MHz पर आकाशवाणी उज्जैन।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। श्रोताओं, सुबह के 10 बज चुके हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

हमारी आज की पहली फरमाइश हमें आई है जहर फिल्म से, उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत है अनु मलिक का और इसे लिखा है सैयद कादरी ने। फरमाइश करता है बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। साथ ही इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने।

अगली फरमाइश आई है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर साथ ही रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में मोहब्बत फिल्म का अगला गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

ये था लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में मोहब्बतें फिल्म से गीत। अगला गीत आपको सुनाते हैं बेवफा फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और बोल लिखे हैं समीर ने। इस गीत के फरमाइशकर्ता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, साथ ही जरूड़ वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज।

अगली फरमाइश आई है राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क MP शाजापुर से MM राजावत राज मधु राजावत राशि रक्षित चित्रंजन कमलेश उमेश सरोज आरती रेखा ऋतिक रिचा स्वीटी सागर रिया रीत ऋषभ एवं समस्त राजावत परिवार की ओर से। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं सावरिया फिल्म से गीत जिसे गाया है शान ने। संगीत है मोंटी शर्मा का और बोल है समीर के।

अगली फरमाइश आई है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूणत। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर की। फरमाइश पर सुनाते हैं फिल्म फूल और कांटे से गीत, जिसे गाया है कुमार सानू ने। संगीत है नदीम श्रवण का और इसे शब्दों में बांधा है समीर ने।

मोरटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल की फरमाइश पर सुनाते हैं अगला गीत कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दिल जले से, जिसे गाया लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का।

अगली फरमाइश हमें आई है कोटवा नारायणपुर बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, साथ ही दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, साथ ही शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय की। इनकी फरमाइश पर सुनाते हैं चलते चलते फिल्म से अगला गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत से सजाया है जतिन ललित ने और शब्द दिए हैं जावेद अख्तर ने।

अभी आपने सुना चलते चलते फिल्म से ये गीत। अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म तेरे नाम से, जिसे संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने, बोल दिए हैं समीर ने और अपनी आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के फरमाइश करता है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलविंदर बीरग, जैतिक बीरग, मीका बीरग, साथ ही गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले।

हमारी अगली फरमाइश आई है कंवर कॉलोनी बड़वा से। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली की। साथ ही फरमाइश है दौलत बाग मुरादाबाद से। जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी की। फरमाइश पर सुनाते हैं इन्हें अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में गीत, जिसे लिखा है फैज़ अनवर ने। संगीत है दबू मलिक का और ये गीत लिया गया है मैंने दिल तुझको दिया फिल्म से।

श्रोताओं, इसी के साथ ये था हमारा आपकी फरमाइश कार्यक्रम। और अगर आप भी हमें पत्र भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी उज्जैन, विद्यापति नगर, नाना खेड़ा बस स्टैंड के पास, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 456010, यानी कि 456010। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन। थोड़ी ही देर में 11 बजने को है और आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

विविधा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ाए है, फिल्मों का रंग चढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद

0: गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।
3: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लड़का रहा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने लड़का रहा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय का

0: रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा। लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर ये फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन, इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन, इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम,
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम,
0: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था। बोल शातिर गजनवी के थे।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव का एहसास करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ गाने की। सन 1946 में एक फिल्म आई थी सोना चांदी। इस फिल्म में एक गाना था प्यारे बापूजी तिरंगे की ले लो कसम, इसे लता मंगेशकर ने गाया था। ध्यान रहे ये वो जमाना था जब लता मंगेशकर फिल्म संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले भारत में आजादी की अलख जगा रही थीं। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन

1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पी एल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पी एल संतोषी ने खुद लिखा था। संगीत हुस्न लाल भगत राम का था।

1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

0: हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलग जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था यशराज फिल्म्स। 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
3: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में

0: शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे, और यही हुआ।
1: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में मां की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट एम ए शेख।
2: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था, उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी आर डी बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था ये।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टसल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है, और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहां से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहां से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूंछें भी नहीं निकली हैं। मैं काफी छोटा था। तो इतनी देर में रविंदर दवे की एंट्री हुई, तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूँ गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिए मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है, आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है।

लोगों को शायद 5,000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला हूँ। देखिए, जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश। मुझे देश, इस देश से बहुत प्रेम है, इसीलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले ही।

स्मृति शेष स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कदरदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक गाना गाया था।

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुर संगम में ये भजन गाया था।

0: एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया।
1: तू मेरा टांगे भाला, तेरी टांगे हौली, तू मेरा टांगे भाला।
0: एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा, उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थीं। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलु और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्नाकिली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ू, उर्दू

पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन है।

हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना। नक नक

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहां उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं

0: में केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले दो मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले दो मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फखर मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है? मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। हाँ। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ।
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

ए संजू, ए बिज्जू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: राजू बेटा एक बात बताइए हमें, आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी, लेकिन अंकल एक पाँच मिनट मेरा मतलब दो मिनट
0: में क्या करेंगे?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे।
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाइयों को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए। चलिए
1: फौजी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
0: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी आप बता रहे थे हमें?
1: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
0: बच्चों से कौन से?
1: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
0: अच्छा अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे।
1: जी हाँ।
0: कोई गाना आपको याद है?
1: हाँ, वो दादा मुनि का जो गाना था,
0: दादा मुनि फौजी।

0: भाई जानते होंगे हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। हाँ, तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद था?
1: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
0: हाँ, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। हाँ। तो चलिए रेलगाड़ी पे चढ़े।
1: हाँ,
0: चलिए आइए।
2: आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से, लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ, तुम

भप भप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हें इंजन, डब्बू तुम्हें कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक लोहे की सड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
1: बस बस बस
2: अंकल स्टेशन आ गया
1: चलिए उतरे
2: हाँ चलिए
1: हाँ उतरे आइए चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे
2: अब
1: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको हाँ कौन से सुनाएंगे आप अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो
2: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा
1: हाँ चलेगा लेकिन किसने गाया बता दीजिए
2: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में
1: वो कौन सा गाना है
2: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: अच्छा चलिए अच्छा ये तो आप अपने नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना चलिए आप सुनाते

0: मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदार।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ हाँ आई एम सॉरी।

0: आग उड़ा, सुबह की किरने आई है,
1: बहुत अच्छे
0: खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है।
1: वाह बेटा,
0: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई।

0: नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
1: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना, मैं भूल गया।
1: आप भी भूल करने लगे ना।
2: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
1: हाँ, फिर चलेगा।
2: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ रहे थे?
1: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
2: मैथमेटिक्स क्यों?
1: मेरे पास एक सवाल है, आप उसे सॉल्व कर सकेंगे?
2: क्या?
1: देखिए, एक बट्टा दो

0: एक बट्टा दो, दो बट्टे चार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
1: ठीक है ठीक है, मैं समझता हूँ आपको बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें है?
0: जी हाँ,
1: तो चलिए सुनाइए
0: आप। चलिए

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे?
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है?
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे?
1: हाँ।
0: कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाएंगे, आप शुरू कीजिए।

0: अच्छा राज, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज के उससे तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे दिखाया करते हैं। जो जोक सुनाया करते हैं।
1: अच्छा कौन सा?
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूं?
0: हाँ हाँ वही सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बताने फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसना

0: दूसरा अशित सेन और तीसरा
1: कृष्ण मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते गए, मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया। वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर, और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी, सिर्फ एक ही गोली।
0: तो
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा।
1: टर्न आई अशित सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो, मैं जंगल में गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया,
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ, बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, तो सही मार दिया।
1: जी हाँ, अब कृष्ण अंकल की टर्न है। उन्होंने कहा, अरे धीरा घुस भी नहीं है, मेरा सुन, वो जंगल में गया, भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, भागा, मैं जंगल के आगे, जंगल मेरे पीछे, सेम, भागा, जंगल मेरे आगे, मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी जाता, वो झाड़ के नीचे एक शेर बैठा था, शेर, वो शेर को मैंने बोला, हे शेर, तू जंगल का राजा है, तो बोला हाँ हूँ, तेरी सब लोग सेवा करते, तो बोला हाँ करते हैं, तो तू झड़ी काय को नहीं पहनता है, तू शर्म के मारे मर गया।
0: तीसरे को आपने शर्म से मार दिया।
1: जी हाँ।
0: सुनिए, आप मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं, उसके अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
1: जी हाँ।
0: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो?
1: जी,
0: पूछेंगे या मैं पूछूं आपसे?
1: जो भी कहें।
0: चलिए हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
1: पूछिए,
0: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा।
1: चलिए।
0: हाँ जी, चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजको, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन हूँ।

0: बताओ। नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था तब।
1: अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह। अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है।
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना। चलिए।

0: पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी।
1: राजवीर ने एक बात जो हम भूल गए।
2: देखिए अंकल, आप फिर से भूल करने लगे।
1: नहीं नहीं, भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए। इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
2: अरे हाँ,
1: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
2: हाँ, उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
1: आपको याद है गाना? याद है।
2: हाँ,
1: तर्ज भी याद है।
2: हाँ, और वैसे मैं आज खुश भी हूँ।
1: अच्छा, तो चलिए सुनाइए मैं कैसे गाना।
2: आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा।

0: राजवीरे अब आगे चले यहाँ से।
1: लेकिन अंकल
0: जी
1: आपने एक भूल की।
0: फिर मैंने की आपने की
1: नहीं की आपने। कह मैं रहा हूँ कि जिस फिल्म में मुझे नेशनल अवार्ड मिला है उस फिल्म का नाम तो आपने बताना ही भूल गया।
0: आई एम सॉरी।
1: खैर मैं बता देता हूँ, उस फिल्म का नाम है चित चोर।
0: अच्छा उसके बाद एक और भूल से आप बच के रहिए कि वक्त हो रहा है हमें चलना है और फौजी भाइयों को नमस्ते कह के उनसे इजाजत लेनी।
1: नहीं अंकल एक गाना।
0: और गाना कौन सा?
1: वो मैं बताऊंगा नहीं, आप सुनिए।
0: नहीं पर बता तो दीजिए।
1: नहीं सस्पेंस।
0: अच्छा गाने भी सस्पेंस वाले।
1: चलिए
0: चलिए सुनाइए।

0: ये थी मास्टर राजू और गुलजार साहब की एक संयुक्त प्रस्तुति जो बरसों पहले विविध भारती पर हुई और अपने संग्रहालय से हमने निकाल कर इसे आपके लिए पेश किया। विविधा कार्यक्रम में आज हमने दो विशेष प्रस्तुतियां आपकी नजर की, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक और इसके साथ ही गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। आज का विविधा कार्यक्रम इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। अब यूनुस खान को दें इजाजत। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर सुनिए विविधा।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का

0: दान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: खड़ी हो गई।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहत नामक कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहत नामा।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3
7: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
7: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
8: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हिमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है
3: जी,
2: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरक्षा।

0: मेरा
1: हेमलता के गाए गीत आज आप सुन रहे हैं यादों की महफिल में।

0: ये चौपाइयां आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पियामन भाई, हेमलता और साथियों की आवाजें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे ये?

0: ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अखियों के झरोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओ, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक पर जो आज हमने इबारत पोस्ट की है उसे पढ़ा है और उस हिसाब से अपने गीतों के जो उनके सिलेक्शन हैं उसको भी बताया है हमें। वैसे आज जो बातें हमने की हैं उसके मातहत बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे हमें भेजे हैं। सावन का जो ये उजाला होता है श्रोताओं, यानी दिन की अगर बात करें तो जितना खूबसूरत होता है रातें भी उतनी ही मनभावन होती हैं, जो दिन की भागदौड़ से दूर थकन के एहसास को दूर भगाती हैं, अपने आगोश में हमें ले लेती हैं। कभी गीत कभी गजल सुकून देते हैं ऐसी रातों में, कभी चांद सितारे हमसे बातें करते हैं।

फूलों कलियों की खुशबू के साथ साथ भीगे सावन की रातों में कुछ खास यादें आपके मन में दस्तक देती होंगी। बरसात की कोई यादगार रात, जब जिंदगी के किसी सफर में कोई अजनबी बना आपका हमसफर और आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया रजनीगंधा के फूलों की महक की तरह। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में सावन की बरसती रातें, कुछ गीत, कुछ यादें हैं हमारी हमसफर। और अब आपसे बता दें, जो इबारत हमने पोस्ट की है ये कुछ इस तरह से है। तुम्हें याद है वो बारिशों की रात, जब सावन के गीत की तरह समा सुहाना था, एक राह के हम दो अजनबी थे। हवाओं ने जब आपके रुख से पर्दा हटाया तो लगा जैसे बैरागी भंवरा नरगिस के फूलों के दामन में आधी रात कोई कविता सुनाता हो और कहता हो, तेरा मेरा प्यार नया है। आज याद आई वही बरसात की रात, जब जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग उठी थी। एक अनदेखी निगाह से दिल ने कहा था, ऐसे तो न देखो। उस रात बादलों में कयामत के काजल थे, हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे। शायद प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, छतरी तानी और दोनों साथ चल दिए। दिल ने सच ही तो कहा था, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं और खोजिए उन शब्दों को जो हैं आज की इबारत में शामिल। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओ जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद और प्रिय से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वरात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे एक राह थी थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सादे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बन जाते हैं। तो यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार हैं?

क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओं? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओं, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं, तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बरसात में तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना, या किसी से मिली लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है, दोनों ही स्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं, तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है। जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओं कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनकी यादों को आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया, लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताजा करनी ही हैं, साथ ही नरगिस का जो फूल होता है क्या आपने उसे देखा है? कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है?

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती हैं कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर जिम जिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो करने लगी, बाद में कमल रूठा उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले, चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ। बप्पा, इन्होंने बप्पा को भी याद किया है यानी गणपति बप्पा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद है। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। ये खूबसूरत हसीना कौन है?

वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओं, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है।

डरती भी झूमती है गाती है बरखा रानी, जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिससे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी। वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोरावस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे। मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था। बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अल नीनो ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम, सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं। पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं। तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओं, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गजल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफर है, वो कौन सा हम सफर है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रोल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारी श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो।

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखाकर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई, बोली आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। यह हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की बारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम यही कहेंगे रिमझिम की तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और उन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है और ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे सचिन देव।

अरुण गोविल और ज़ीना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था। आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों के संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में श्रोता? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी, चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना, यानी सुरमई यादों, तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूँ और वहाँ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओ, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वाद्य बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में जगह वृंदावन गए, वहां किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

0: की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओं, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: फिर से सुन ले। 16 अगस्त 2026 यानी आज शाम 7:30 से 8 बजे के बीच फोन नंबर है 2660902 या 2660903 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। ये थी कार्यक्रम संबंधित जानकारी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनते हैं सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाज में। गीत लिखा है गौहर कानपुरी ने और संगीत राजकमल का है।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। और अब अगला गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है आया सावन झूम के इस फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसी के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि स्वर्गीय श्री वाजपेयी के नेतृत्व में देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कार्यक्रम में उन्होंने वंदे मातरम के 150वें वर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नई प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया है।
2: वोट बैंक की लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है।
1: इस दौरान श्री शाह ने राजस्थान में 15 जिलों के 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व को याद किया तथा उनकी स्मृति में पौधरोपण किया। पन्ना जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में नाले के तेज बहाव में बहे 37 वर्षीय जितेंद्र रैकवार का शव 2 दिन की तलाशी के बाद बरामद कर लिया गया। 14 अगस्त की रात मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हुआ था। होमगार्ड और SDERF की टीम ने घटनास्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर शव को बरामद किया। शिवपुरी जिले में इस मानसून सीजन में 1 जून से अब तक 471.52 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भू अभिलेख अधीक्षक के अनुसार जिले की औसत सामान्य वर्षा 816.3 मिलीमीटर है। बारिश के कारण सिंध नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क भी अदा करना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही निर्धारित की गई है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू होगी। प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में भारत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की थी। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट

संभाग में भी तेज बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक सामान्य से करीब 12% कम बारिश दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने यह बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
4: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में

0: इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
2: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
3: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
1: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव

0: तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अताचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

किशोर कुमार लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

0: आरजू फिल्म का गीता मोहम्मद रफी की आवाज में शंकर जयकिशन की तर्ज हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड

0: एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बैठ जा, खड़ी हो जा।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मिलन फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहां से हुजूर।

रोशन का संगीत था। साहिर लुधियानवी की रचना आपने सुनी सुधा मल्होत्रा की आवाज में फिल्म बाबर से। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

पेश खिदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभयनंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलवदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश, श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के, का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताद अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और संयम के साथ सिद्धांत जैन का भी नाम है। ये पेठ अकोला के हमारे श्रोता हैं।

ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। एसएच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं। सचिन नीलखन, आयुष पीयूष, आराध्या, सारिका, मधुकर राउत, ये हमारे रंगनाथ देउल गांव के श्रोता हैं। मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और इनके परिवार के सभी सदस्य। अब अगर

विविध भारती से आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत।

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धनवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश। शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, राजा महदेली खां के बोलों के सुरों में ढाला मदन मोहन ने, और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है, और शाहिद दीपक और ऋषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से, गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार, और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते हैं इसी तरह से अपने पत्र, और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
2: आओ भाई साहब।
1: अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी सर सिधार गई।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता है टूट फूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्ता, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। आ, आ, आ, आ, आ, आ, कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है, खोई खोई सी। चांद सा कोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देती। भाई उधार चल।
1: हाँ
2: उधार
1: चल। हाँ
2: तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
2: हो ना।
1: हाँ
2: तुम ऐसा करो, तुम ही कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
1: देखो भाई कृपण चल, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ
1: बताऊ
2: बताओ
1: बताऊ
2: अब बताओ। अरे
1: देखो भाई, तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवा दो।
2: जरी के काम की साड़ियाँ?
1: अरे इतना ही नहीं, साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
2: साड़ियाँ जेवर? नहीं नहीं भाई नहीं, ये तो बहुत महंगा उसका है।
1: महंगा?
2: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदासन भाई उदासन, कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
2: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई साड़ी जेवर पर कमाई समझो उसकी आफत आई।
1: तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
2: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई।
2: हाँ तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
2: शादी? नहीं नहीं नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? है बोलो भाई, है तो गारंटी नहीं? अरे भाई तुम जानते नहीं हो, अक्सर शादी लाती है बर्बादी।
1: अच्छा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
2: एक ही बार तो की थी।
1: हाँ एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
2: नहीं नहीं आया ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। उदास कोई आज मुस्कान।
1: नहीं नहीं भाई मैं कुछ नहीं जानता, बेटी तुम्हारी है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं चला दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
2: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है।
1: अच्छा?
2: वो रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
1: ठीक है मैं दुलारी को भेजवा देता
2: हूँ। दीदी को भेजना जरूर।
1: हाँ भेज दूंगा।
2: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी जेवर शादी आया आया आया आया आया, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आया
3: चाचा जी।
2: हाँ दादी तुम आ गई।
3: क्या बात है मुझे बताइए। चाचा जी मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है।

0: थी।
1: अरे बाबा, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने पासपोर्ट से सील बढ़ा दिया।
0: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
1: है? किस चिड़िया का नाम है जी?
0: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
0: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए। उसकी शादी कर दीजिए।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं सुनूंगा।
0: रूपा देखा दुलारे, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद क्या गई, तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चले।
2: प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा था तू? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
0: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
1: क्या हुआ मेरी बेटी को?
0: बदकिस्मत थी।
1: अरे तू नहीं बोलो तो कुछ।
0: दुर्भाग्य।
1: अरे बता दे, क्या हुआ?
0: रूपा बहन।
1: हाँ, क्या हुआ उसे?
0: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
1: अच्छा,
0: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
1: अरे,
0: मेरे लिए एक ही रास्ता है।
1: क्या?
0: मौत।
1: और वो नीचे कूद गई।
0: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
1: क्यों?
0: चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई। मूर्छित हो गई। मैं दुला रही, मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
0: जल्दी जाइए,
1: तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी डॉक्टर।
0: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
0: हाँ, अब क्या होगा? डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
3: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा।
0: अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
0: चाचा जी, रूपा पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
4: मैं डॉक्टर बोगस चंद।
1: हाँ, बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
4: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
5: और मैं हूँ कविराज
1: मूढ़ानंद,
5: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही रोग पलायन कर जाता
6: है। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमक सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को।
1: अरे भाई, मैंने कहा अपने मुंह में मिट्टू बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
4: क्या तकलीफ है आपको?
5: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
6: अरे नहीं, मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे मतलब कम समय।
1: सावधान के, मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
5: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता।
6: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
1: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
0: जाइए।
1: वो आ गया। क्या हाल है मेरी बेटी का?
4: हमने अच्छी तरह एग्जामिन कर लिया।
1: गुड, वेरी गुड।
4: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
1: क्या बात है जी? पापा, मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
5: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
6: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
4: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
5: मैं भी आप दोनों

0: से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
1: अच्छा,
0: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सकेगा।
1: अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले, तब तक मैं बेटी को देख लूँ।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
0: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
3: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
0: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञात ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं, छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
0: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
3: अरे भाई,
0: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई खटकता भी नहीं।
3: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
0: अच्छा,
3: और धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
3: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब खानदानी
2: गधों का इलाज करता हूँ।
0: दीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
1: बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, आप लोगों ने क्या किया?
0: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जाता।
1: तो जल्दी कोई इलाज बताइए,
0: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सेठ जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
0: और अपनी भी तो कहो
4: सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
3: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जहीर और ठग हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक।
3: अरे खानदानी हकीम का जनाब, सिर्फ मैं हूँ खानदानी हकीम जी। हाँ ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सौंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
1: मगर हकीम साहब,
3: हाँ जी
1: मरीज मैं नहीं, मेरी बेटी है।
2: तो क्या हुआ, एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया,
0: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को देखने जाते
1: हैं। सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। अब मेहरबानी करके ये लीजिए अपनी फीस, और आप भी लीजिए अपनी फीस,
2: और
1: तशरीफ ले जाइए
2: के लिए दवा।
1: पाला पड़ा
5: चाचा जी, क्या बताया उन लोगों ने?
1: अरे वे लोग गधे थे दुलारी।
5: मैं तो पहले कह रही थी,
1: लगता है मेरी रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा।
5: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं।
1: बेटी तू भी चलाएगी।
5: एक नया डॉक्टर आया है, उसके हाथ में बहुत यश है, भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी।
1: अरे तो जाना, जब मेरा मुंह क्या पाक रही है, जाकर जल्दी से बुला ला। और देख बेटी, बेटी फीस पहले से तय कर लेना, नहीं तो बाद में।
5: मैं सब पक्का कर रही हूं।
1: तो बस
5: अभी गई और अभी आई।
1: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था। अरे भगवान, सैकड़ों रुपया पर पानी फिर गाएगा। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये।
6: अरे भाई खबर क्या, डॉक्टर बोगस चंद ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है।
1: हाँ भाई बेहोश पड़ी है।
6: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो, मेरी बात मानो, पल भर में रूपा को होश आ जाएगा।
1: क्या करूँ बताओ बताओ तुम्हें बताओ ना।

0: उसके कान में धीरे से कहो, बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ। बस वो आंखें खोल देगी, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है।
1: अपनी बकवास बंद करो उदासना, मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो।
0: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें, मैं तो
1: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं, बोलो करते हो नहीं, बोलो।
0: हाँ, तो हूँ।
1: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे बनाना चाहते हो? मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद।
0: हाँ, बोलो।
1: मेरा नाम भी कृपण चंद है। हाँ, मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ।
0: लेकिन मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ।
0: अब ठीक है, अब मुझे क्या।
1: हाँ हाँ, जाओ जाओ दूर कहीं का। मुझे उल्लू बनाने आया था। अरे बाप रे, आया आया आया आया, अभी तक दुलारी नहीं आई। देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है।
2: चले आइए प्रेम बाबू, चाचा जी अंदर हैं।
3: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना।
2: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा, चाचा जी बड़े काइयां हैं, कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही, मेरी भी खैर नहीं रहेगी।
3: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी, लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी तो।
2: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है, बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दे। बस
3: फिक्र ना करो तुम, मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज।
1: अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
2: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं।
1: हाँ। अरे ये डॉक्टर है
2: क्यों,
1: एकदम छोकरा
3: श्रीमान जी।
1: ये क्या इलाज करेगा,
3: आप मुझे मामूली डॉक्टर न समझें।
1: अच्छा,
3: मैं मनोचिकित्सक हूँ।
1: ये क्या बला है जी,
3: ना मैं सुई लगाता हूँ। अच्छा? और ना मिक्सचर देता हूँ, ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता हूँ।
1: कैसे इलाज करते हो जी तुम?
3: जी चेहरा देख कर श्रीमान जी, मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्द बता सकता हूँ।
1: अच्छा
3: जी हाँ।
2: हाँ चाचा जी, इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था। अरे चाचा जी, इनके हाथ में जादू है जादू।
1: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब देख लीजिए।
3: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी।
2: मगर वो तो बेहोश है।
3: जी हाँ, है नहीं थी। मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है, जाकर मरीजा को ले आओ।
2: अभी लाई अभी लाई।
1: कमाल है, वाह वाह वाह वाह, आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है।
3: जी नहीं, भगवान का दास हूँ, उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं। देखिए आपकी बेटी आ रही है।
1: मगर डॉक्टर साहब
3: जी,
1: चेहरा अभी भी पीला है। आया आया, कितनी दुर्बल हो गई है, देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती।
3: सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप मुझ पर विश्वास रखिए।
2: लीजिए मरीज आ गई।
3: ठीक है, मुझे इनसे बातें करने दीजिए। अब आप लोग
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने ही बातें करो।
2: मगर चाचा जी ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
3: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
2: चाचा जी आइए, हम लोग उस कोने में चले, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया,
2: मेरी प्राण
1: दुलारी,
2: मेरी आंखें तो
1: डॉक्टर क्या गुजर गुजर रहा है।
2: अरे चाचा जी, रूपा से मर्द की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
2: क्या हुआ चाचा जी, रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना।
1: डॉक्टर साहब
3: जी,
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
3: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा,
3: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा
1: जी? आप पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी रूपा फोन कर ले जाने।
3: देखिए दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
3: जी हाँ
1: जी।
3: अगर मन

0: तन है तो तन चंगा है और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है, इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
0: जी हाँ, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का भूत
1: रहा है।
0: मैं गलत कह रहा हूँ?
2: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
0: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
2: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
0: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
0: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे?
0: जी नहीं, जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए।
0: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
0: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
0: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
2: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? हाँ बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
0: हाँ, ये समस्या।
1: हाँ वही वही ना बात।
2: डॉक्टर साहब जी, आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
0: वो कैसे?
2: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
2: अरे लेकिन वेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए, रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
0: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
2: डॉक्टर साहब, आप कृपा करके हमारी विनती मानिए, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं अभी रूपा को लाती
1: हूँ। बताइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बताइए डॉक्टर, जैसे भी हो बता लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
0: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा।
1: गुड गुड।
0: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही है, सही है, बिल्कुल सही।
0: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
2: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छा बेटी, इतने नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
2: क्या ये सच है पिताजी?
1: हाँ हाँ, पसंद है।
2: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
2: मैं अभी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन तो, अरे सुन तो पिताजी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है, नाटक।
2: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं हो ना?
2: नहीं, लेकिन
1: बेटी लाओ तो अपना हाथ। ऐसे हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
0: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा रहा है, चलवाती दो। ला बेटी हाथ दो। हाँ ए जिनो, अपने हाथ से मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया।
2: हाथ छोड़ना मत, इसी तरह पकड़े रहो, पंडित जी भी आ गए हैं।
3: वाह जजमान वाह, अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है?
1: ये तो ठीक है।
3: जजमान, तो मैं कराऊंगा ब्याह।
1: लेकिन पंडित जी, पंडित जी, अरे ये तो नाटक है।
3: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है। कहा है ये संसार जो है, ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता है।
0: तो जजमान, वरवधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: तब ठीक है, तब ठीक है।
3: तो बच्चा लोग, अब तुम जरा इसके आसपास फेरे लगा लो जो है।
0: मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरी।
3: समझ लो यजमान, हमारे भी पड़ गई। हाँ सदा से भाग्यवती रहो, सदा से भाग्यवती रहो। हाँ।

0: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: अब सुनिए जजमान, अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है, और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे।
0: पंडित जी, मेरी बात तो
2: चाचा जी, आशीर्वाद में कंजूसी कैसी, दीजिए ना। नाटक पक्का होना चाहिए।
0: पक्का होना चाहिए, बिल्कुल। मैं आशीर्वाद देता हूँ।
1: बोली,
0: ये जोड़ी
3: चल भाई वाह, यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने। अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी। मैं अभी जाकर साड़ियाँ और जेवर।
0: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया, बैठो तुम, बैठो।
1: अच्छा अच्छा जी, मैं
0: बोले
1: तो अब हमारी दक्षिणा तुमने जाए जो है।
0: कैसी दक्षिणा? शादी तो
2: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी। पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है।
0: आया आया आया, लीजिए और यहाँ तो खिला दिया।
1: जय हो जजमान की। आए, ये क्या केवल बीस आने पैसे जो जो। अरे राम राम, जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है, कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए।
0: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा, ये समझ लीजिए। और लेना हो तो लो, नहीं तो उसे भी लौटा।
1: अरे अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान, मैं जाता हूँ।
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए, चलो रूपा।
0: अरे तुम लोग कहाँ जाओगे भाई?
2: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी, वहीं जा रहे हैं।
0: ये क्या मजाक है? देखा तुमने, देखा कल की छोकरी हमें बना रही है।
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है? अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद, तो उसे विदा भी कर दो।
0: कैसी शादी, कैसी विदा? अरे उदासन उदासन तुम नहीं समझते भाई, तुम नहीं सोचते। अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था। देखते नहीं, देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई।
3: इलाज नाटक भाई, ये सब क्या चक्कर है? यानी कि
4: अब हमें क्या मालूम, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं। आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया। चलो रूपा।
0: अरे अरे अरे लोगो, अरे लोगो, अरे लोगो, अरे लोगो, अरे अरे लोगो, अरे लोगो, अरे
3: भैया कृपण चंद गए। तो जाने तो क्या हुआ?
0: उदार चंद के बकवास, ये बिल्कुल बकवास है। उदार चंद, ये डॉक्टर था, डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा, मेरी लड़की को ले भागा। उदार चंद मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा। तुम्हारी से पूछ लो
3: तुम्हारी क्या बात है?
2: कुछ नहीं पिताजी, रूपा प्रेम बाबू को चाहती है,
3: ठीक है,
2: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं।
2: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
0: नाटक
3: भाई कृपण चंद, आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए।
0: भगवान, अरे ये क्या हो गया? मैं तो समझता था शादी का ढोंग पुराने मर्ज का नया इलाज है। मेरी बेटी के साथ साथ मेरी दौलत पर भी प्रेम का अधिकार होगा। आया अरे अरे भाई उधार चल।
3: हाँ कृपण चल।
0: अरे संभालो,
3: हो गया।
0: अरे चक्कर,
3: हाँ चक्कर चक्कर।
0: अरे नहीं अल्ले चक्कर, अरे
5: पुराना मर्ज नया इलाज, ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक, थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है, पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी,
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है। और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर
1: जी, सुंदर नाम है।
2: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
2: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह।
2: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह।
2: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे?
2: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं, तो ऐसा ही गांव।

0: मैं अभी भी मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
1: जी जी,
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी जी,
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
1: जी जी,
0: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते हैं आप। एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था
1: जी,
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी,
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पत्रे की शेड था।
1: हाँ,
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गाय हैं भैंसे हैं बकरियां हैं वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे, तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे,
0: साफ करके उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग
1: जी,
0: जिसको
1: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में आती
0: है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है।
1: जी,
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे, और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे, और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, और इसीलिए मुझे मालूम

0: में उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है, इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माता जी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहां कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

0: बोलो बा से क्या होता है?
1: बंदर।
2: बादुर।
0: तू बनने के

0: है?
1: पीटर
0: जगदीश।

0: बावन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है वहां। कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है, स्क्रिप्ट तो

0: जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
1: जी।

0: मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है
1: okay.
0: मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो एक पल्लू चाहिए। तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू
1: डाल
0: के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
1: वाह,
0: बड़ी बड़ी मूंछें है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
1: यस।
0: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
1: क्या बात,
0: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
1: वाह,
0: वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
1: जैसे
0: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
1: ओहो, पूरी रात?
0: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
1: बचपन में याद हो गए थे भारूड?
0: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
1: अरे,
0: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो भारूड वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
1: बिल्कुल, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया, अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड़ में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड़ में ही पढ़ता रहा
0: जी। एक नई दुनिया खुली,
1: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग, अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है। पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
0: ओहो हो।
1: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
0: बहुत सही बात है।
1: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो
0: जी,
1: तो वो और भी बढ़ गया। वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है, 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट और पढ़ने पढ़ाने का

0: बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहां, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था। जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शोले याद है, इतनी सारी फिल्में याद है। जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देखे

0: ही लेते थे पैसे।
1: कितना रोमांचक था ये,
0: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
1: वाह वाह,
0: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
1: हाँ, हाँ।
0: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे
1: चढ़ रहा,
0: रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
1: जी,
0: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया
1: जी जी,
0: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
1: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
0: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
1: लड़की बने थे?
0: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
1: ओ,
0: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
1: जी।
0: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला।
1: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
0: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड़ ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए वहां की राजनीति में। ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है वहां। नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, दो तीन साल गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और ढाई आकर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसी लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर, ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में, तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे
1: जी जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप फोर में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप फोर में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना, पर वो स्कॉलरशिप मिली इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहाँ तक की। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे हैं।
0: जी, जी, जी,
1: आपने
0: जी,
1: बताया।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस होके किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा गैदरिंग के नाटक,

0: जी जी जी गैदरिंग का मामला।
1: उसके
0: था।
1: बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी।
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्रिंबक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
0: ओहो
1: रुकिए राम राज आ रहा है।
0: हाँ।
1: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक
0: जी।
1: वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक, जो फेस्टिवल होता था नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
0: गजब गजब।
1: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
0: अरे
1: हाँ। तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म। तो ये परफॉर्मेंस करते रहे, पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
0: जी।
1: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये

0: औरंगाबाद का दौर रहा, फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।
2: मुसा

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है, तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की, वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैंने एक साल नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी,
1: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करें, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं, जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए?
1: तो मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह।
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल्स स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी,
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावना

0: भावनाएं हैं उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहाँ भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला।
1: तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लिखे गए,
0: एक सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी, आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में दो तीन साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अंबेचा गोंधड़ी एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली
1: पैसे
0: पेज पे इतने पैसे फेंकते थे।
1: वाह,
0: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के
1: पेट में लगा।
0: हाँ, पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
1: अरे बाप,
0: उसके बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उसको काकू बोलते थे। तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था।
1: हाँ।
0: अब वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए
1: जी,
0: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
1: मॉडल भी
0: साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है और सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाई है। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
1: वाह, क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
0: यार रहमान का लगाइए।
1: ठीक है, दिल से गाना सुनिए, दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: उजाले उनकी यादों की।
2: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। सांधिकालीन सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं की पसंद का कार्यक्रम युववाणी।

0: रविवार की शाम, थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी फुर्सत, और अगर साथ में हो कुछ ऐसी बातें जो हमारे सपनों और हमारे भविष्य से जुड़ी हों, तो फिर शाम और भी खास हो जाती है।
1: बिल्कुल आयशा, क्योंकि रविवार सिर्फ आराम करने का दिन नहीं, बल्कि आने वाले सप्ताह के लिए कुछ नया जानने, कुछ नया सोचने और शायद अपने किसी सपने की तरफ एक कदम बढ़ाने का दिन भी हो सकता है।
0: बिल्कुल। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन केंद्र के युवाओं के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आयशा।
1: और मैं हूं कीर्ति। आप सभी को इस सुहाने रविवार की शाम की ढेरों शुभकामनाएं।
0: वैसे कीर्ति, आज का कार्यक्रम मुझे इसलिए खास लगता है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जिसका सीधा संबंध हमारे युवाओं की पढ़ाई, उनके स्किल्स और उनके करियर से है।
1: जी हाँ दोस्तों, और शुरुआत करेंगे एक ऐसी पहल से जहाँ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं।
0: हम बात करेंगे नमो ग्रीन रेल की, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, और सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में बढ़ते कदमों की, यानी सफर वही लेकिन सोच थोड़ी ज्यादा हरित।
1: और पढ़ाई की बात निकली है तो स्कॉलरशिप्स को कैसे भूल सकते हैं।
0: बिल्कुल, हमारे अगले सेगमेंट में बात होगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जुड़ी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज की, जहां हम जानेंगे विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम और छात्राओं के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में।
1: क्योंकि आयशा, कई बार टैलेंट और मेहनत की कमी नहीं होती, बस सही अपॉर्चुनिटी की जानकारी समय पर मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है।
0: और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे माइनॉरिटी यूथ वेलफेयर स्कीम्स की,
1: जिसमें स्कॉलरशिप से लेकर फेलोशिप, कोचिंग तक युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण अवसरों की जानकारी शामिल है।
0: हम जानेंगे प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट का मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में, साथ ही कई अन्य योजनाओं पर भी हम बात करेंगे।
1: यानी कि अगर आप या आपके आसपास कोई युवा पढ़ाई के साथ आगे बढ़ने के लिए किसी अवसर की तलाश में है तो आज का यह हिस्सा आपके लिए काफी काम का हो सकता है।
0: और पढ़ाई के साथ साथ आज के समय में एक और चीज बेहद जरूरी है, वो है स्किल्स।
1: बिल्कुल, डिग्री आपको रास्ता जरूर दिखा सकती है दोस्तों, लेकिन स्किल्स उस रास्ते पर आगे बढ़ने में आपकी मदद करती है।
0: इसीलिए हमारे अगले सेगमेंट में होगा स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम, जहां हम बात करेंगे नई मंजिल और सीखो और कमाओ जैसी योजनाओं की, जो युवाओं को एजुकेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर देती है।
1: तो आज की शाम में बात होगी हरित सफर की, पढ़ाई के अवसरों की, स्कॉलरशिप की, स्किल्स की और योजनाओं की जो किसी युवा के सपनों को एक मजबूत दिशा दे सकती है।
0: और हाँ, कार्यक्रम के आखिर में हमारा एक ऐसा सेगमेंट भी होगा जिसका इंतजार शायद हमारे उन श्रोताओं को सबसे ज्यादा रहता है जो अपने करियर को लेकर गंभीर हैं और नई अपॉर्चुनिटीज पर नजर गड़ाए रखते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, अंत में होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जहाँ हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे।
0: तो रविवार की शाम को यूं ही मत जाने दीजिए, थोड़ी सी चाय, थोड़ा सा सुकून और साथ में युववाणी।
1: तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और इस सकारात्मक सोच के साथ शुरू करते हैं आज का युववाणी कार्यक्रम और सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत।

0: श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म आराधना से, जिसे गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने और लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में रोज करीब 23 मिलियन लोग ट्रेन का सफर करते हैं?
0: और करें भी क्यों ना, कभी ना रुकने वाला हमारा प्यारा और महत्वाकांक्षी देश, और भावनाओं अनुभवों से जुड़ा सफर का मजेदार माध्यम।
1: सच में ट्रेन का सफर ही कुछ ऐसा होता है आयशा, खिड़की के बाहर बदलते नजारे, पटरी की लय, और मंजिल से ज्यादा खूबसूरत कभी कभी खुद सफर लगने लगता है ना।
0: बिल्कुल, मैं तो सच में ट्रेन के सफर की

0: बड़ी फैन हूँ।
1: अरे वाह, तो आयशा क्यों ना आज हमारे श्रोताओं को और साथ में आपको भी एक खास ट्रेन के सफर पर ले चलें।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज का सफर है एक ऐसी ट्रेन का जो सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि पूरे देश को एक नए और हरित भविष्य की ओर भी ले जा रही है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर ट्रेन की ओर।
1: और सबसे पहले इसकी सबसे एक्साइटिंग बात, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है दोस्तों। 17 जुलाई 2026 को इसके उद्घाटन के बाद ये ट्रेन जिंद सोनीपत सेक्शन पर चल रही है।
0: यानी कि ये कोई भविष्य के ख्यालों की कहानी नहीं है बल्कि आज की हकीकत है।
1: बिल्कुल, अब जरा इमेजिन कीजिए, आप कोई स्टेशन पर खड़े हैं, सामने से ट्रेन आ रही है, 10 कोचेस वाली ट्रेन, करीबन 2600 यात्रियों की कैपेसिटी होगी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है।
0: लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। हाइड्रोजन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही एनर्जी ट्रेन को आगे बढ़ाने में काम आती है।
0: मतलब जिस हाइड्रोजन को हम अब तक एनर्जी के फ्यूचर से जोड़कर देखते थे वो अब रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा है।
1: और यही वो जगह है जहाँ एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा गर्व करना तो बनता है, क्योंकि ये ट्रेन भारत में सिर्फ चल ही नहीं रही है बल्कि इसे भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है दोस्तों।
0: वाह, यानी कि मेक इन इंडिया और ग्रीन मोबिलिटी दोनों की झलक एक ही ट्रेन में।
1: बिल्कुल सही, और एनवायरनमेंट के लिए इसका महत्व भी कुछ कम नहीं है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज पर आधारित इस सिस्टम के संचालन में मुख्य उत्सर्जन के रूप में सिर्फ वाटर वेपर्स और हीट निकलती है।
0: यानी कि सोचिए, ट्रेन वही, सफर वही, लेकिन एनर्जी का तरीका बदल रहा है और यही बदलाव हमारी हवा और एनवायरनमेंट के लिए बड़ी बात बन सकता है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस ट्रेन को देखकर सबसे अच्छी फीलिंग यही आती है कि भारत डेवलपमेंट को सिर्फ और तेज बनाने की नहीं बल्कि और सस्टेनेबल बनाने की दिशा में भी सोच रहा है।
0: और मजे की बात यह है कि हमारी ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को लेकर जिंद से सोनीपत नहीं जा रही,
1: वो अपने साथ एक आइडिया भी लेकर जा रही है कि आने वाले समय में हमारा ट्रांसपोर्ट कितना क्लीन और स्मार्ट हो सकता है।
0: यानी भारत ने सिर्फ ट्रेन नहीं बनाई, उसके साथ पूरा एक हाइड्रोजन इकोसिस्टम खड़ा किया है।
1: हाँ, और यही इस प्रोजेक्ट को इतना खास बनाता है आयशा, क्योंकि ये एक तरह से भारत के लिए रियल वर्ल्ड लर्निंग भी है। ट्रेन असल में चल रही है तो अब टेक्नोलॉजी को ग्राउंड पर समझने का मौका भी मिल रहा है।
0: और ये लर्निंग आगे बहुत काम आने वाली है दोस्तों। आज जो एक्सपीरियंस जिंद सोनीपत में मिलेगा कल वही दूसरी जगहों पर हाइड्रोजन पावर्ड मोबिलिटी के काम आ सकता है।
1: और यही वजह है कि इसका कनेक्शन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत के नेट जीरो कार्बन इमिशन गोल से भी जुड़ता है।
0: यानी एक तरफ देश में रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ उसी क्लीन एनर्जी थिंकिंग को ट्रांसपोर्ट में भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है।
1: वाह, और ये भी कम गर्व की बात नहीं है कि भारत में अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जो हाइड्रोजन पावर्ड रेल ट्रांसपोर्टेशन को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के साथ।
0: सच कहूँ तो मुझे ये कहानी में पहली हाइड्रोजन ट्रेन से ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि भारत ने इसे खुद बनाया और खुद इसके साथ सीखना शुरू किया।
1: बिल्कुल, यही तो आत्मनिर्भरता का असली मजा है आयशा, सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी को समझना, डेवलप करना और फिर उसे जमीन पर उतारना।
0: और एनवायरनमेंट वाला फायदा तो अलग है ही, अगर आने वाले समय में ऐसी क्लीनर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट से होने वाले एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।
1: तो आज के इस ट्रेन की सैर से एक बात तो तय है
0: कि हमारा देश इस ट्रेन में बैठकर एक बेहतर, स्वच्छ, स्मार्ट और सस्टेनेबल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है।
1: वाह, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पर हो जाए एक प्यारा सा गीत।
0: हो जाए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी आपने सुना फिल्म कुछ ना कहो से शंकर महादेवन और मधुश्री की आवाज़ में बहुत ही सुंदर गीत, जिसका संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने और बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने।
3: वैसे कीर्ति, अभी हमने एक ऐसी ट्रेन की बात की जो देश को सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी भी देश का असली फ्यूचर तो उसके युवा होते हैं ना?
2: बिल्कुल ऐशा, और युवाओं के फ्यूचर की बात हो तो एजुकेशन, उसके लिए मिलने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करना भी उतना ही ज़रूरी है।
3: क्योंकि कई बार कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, उसके सपने भी बड़े होते हैं, लेकिन कॉलेज की फीस, बुक्स, इक्विपमेंट्स या फिर कंप्यूटर जैसी कुछ ज़रूरतें उसके रास्ते में आ जाती हैं।
2: बिल्कुल, और ऐसे ही समय में स्कॉलरशिप सिर्फ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होती, बल्कि कई बार वह किसी विद्यार्थी को ये भरोसा देती है कि हाँ, मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ।
3: इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP

0: पी पर उपलब्ध AICTE की दो महत्वपूर्ण स्कॉलरशिप स्कीम्स की, सक्षम और प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम।
1: दोनों स्कीम्स का उद्देश्य अलग अलग विद्यार्थियों को सपोर्ट करना है, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है, 50,000 प्रति वर्ष की फाइनेंशियल असिस्टेंस।
0: तो चलिए पहले बात करते हैं AICTE सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम की।
1: सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम खास तौर पर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी सर्टिफाइड डिसेबिलिटी 40% या फिर उससे अधिक है और जिन्होंने AICTE अप्रूव्ड टेक्निकल डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है।
0: और यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि एक तरीके का पूरा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन तक पहुंचना और उसे पूरा करना कई बार कुछ अतिरिक्त चुनौतियों से जुड़ा हुआ भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, और सक्षम के तहत एलिजिबल स्टूडेंट्स को 50,000 प्रतिवर्ष की फाइनेंशियल असिस्टेंस DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है।
0: अब जरा सोचिए कि मात्र 50,000 रुपए किसी विद्यार्थी के लिए क्या बदल सकता है।
1: बहुत कुछ ऐसा, कॉलेज फीस में मदद हो सकती है, किताबें खरीदी जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए जरूरी इक्विपमेंट लिए जा सकते हैं और कंप्यूटर जैसी जरूरतों में भी ये राशि बहुत काम आ सकती है।
0: यानी कि स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट सिर्फ एक चेक या फिर कुछ अमाउंट तक सीमित नहीं है, इसका असर विद्यार्थी की पूरी एजुकेशनल जर्नी पर पड़ सकता है।
1: बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा असर शायद कॉन्फिडेंस पर होता है। जब किसी स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है ना, तो उसे ये महसूस होता है कि उसकी एजुकेशन और उसके करियर को भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है।
0: और सक्षम की एक और खास बात है, इसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस की कंडीशन मैंडेटरी नहीं है।
1: हाँ, वही इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो शेयर्ड एलिजिबिलिटी डिटेल्स के अनुसार फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों।
0: तो अगर आपके पास कोई भी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट टेक्निकल डिप्लोमा कर रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी की जानकारी उसके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।
1: और अब बात उस स्कॉलरशिप की जो खास तौर पर गर्ल स्टूडेंट्स को हायर टेक्निकल एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करती है, AICTE प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम।
0: प्रगति नाम ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि किसी लड़की की एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि उसके पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों की प्रगति पर भी असर डाल सकती है।
1: बिल्कुल, ये एक मेरिट बेस्ड स्कीम है और AICTE अप्रूव्ड टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम की फर्स्ट ईयर में एडमिटेड गर्ल स्टूडेंट्स इसका टारगेट ग्रुप है।
0: और एक फैमिली से अधिकतम 2 गर्ल्स इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकती हैं।
1: साथ ही फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और स्टूडेंट का एडमिशन स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस के माध्यम से होना चाहिए।
0: और फाइनेंशियल असिस्टेंस का क्या कीर्ति?
1: फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ भी 50,000 प्रतिवर्ष कोर्स की अवधि के दौरान DBT के माध्यम से दिया जाता है। आयशा,
0: बिल्कुल, यानी कि अगर कोई लड़की टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है, इंजीनियरिंग या किसी दूसरे अप्रूव्ड टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम में आगे बढ़ना चाहती है, तो ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट उसके लिए काफ़ी मीनिंगफुल हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आज भी कई फैमिलीज में लड़की की हायर एजुकेशन को लेकर फाइनेंशियल डिसीजंस आसान नहीं होते, ऐसे में स्कॉलरशिप परिवार पर फाइनेंशियल बर्डन कम करने में मदद कर सकती है।
0: और इसका दूसरा इम्पैक्ट है चॉइसेस का विस्तार।
1: बिल्कुल, जब एजुकेशन की कॉस्ट का कुछ हिस्सा मैनेज हो जाए तो लड़की शायद वह कोर्स चुन सके जिसे वह वास्तव में करना चाहती है, बुक्स और लर्निंग रिसोर्सेज पर खर्च कर सके और अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सके।
0: यानी कि प्रगति सिर्फ 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि एक लड़की के लिए अपने टेक्निकल करियर को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर बन सकती है।
1: और सक्षम और प्रगति दोनों के साथ देखें तो एक कॉमन मैसेज सामने आता है आयशा, टैलेंट और एम्बिशन को फाइनेंशियल लिमिटेशंस की वजह से रुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल, और दोनों स्कीम्स के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन है। एलिजिबल स्टूडेंट्स को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर मैंडेटरी OTR यानी कि वन टाइम रजिस्टर पूरा करना होता है,
1: उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन भरनी होगी। 2026-27 अकेडमिक ईयर के लिए एप्लीकेशन डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2026।
0: और दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। सक्षम के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या UDID जैसे डॉक्यूमेंट्स, वहीं इनकम सर्टिफिकेट और एडमिशन प्रूफ जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इंस्टीट्यूशन में लेवल 1 वेरिफिकेशन के लिए जमा करने होंगे।

0: तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो डेडलाइन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। पहले एलिजिबिलिटी चेक कीजिए, OTR पूरा कीजिए और फिर एप्लीकेशन प्रोसेस समय पर शुरू कीजिए।
1: क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, कभी कभी ये किसी स्टूडेंट के लिए फीस और किताबों के बीच का बड़ा फर्क होती है।
0: कभी किसी लड़की के लिए अपने पसंद के करियर को चुनने का कॉन्फिडेंस,
1: और कभी किसी स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट के लिए भरोसा कि उसकी क्षमता उसकी परिस्थितियों से बड़ी है।
0: तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जो इन योजनाओं के लिए एलिजिबल हो सकता है तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा।
1: क्योंकि सही स्कॉलरशिप की जानकारी सही समय पर मिल जाए तो शायद किसी के सपनों को पूरा होने से और आगे मदद मिलेगी।
0: और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे उन वेलफेयर स्कीम्स की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के युवाओं के लिए एजुकेशन और करियर के नए रास्ते खोलने की कोशिश करती है।
1: लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: वैसे कीर्ति, अभी हमने स्कॉलरशिप की बात की और मुझे लगता है कि आज की चर्चा का ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हमारे देश में कई युवाओं के सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां कभी कभी उन सपनों के रास्ते में आ जाती हैं।
1: बिल्कुल आयशा, इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ओर से कई वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के युवाओं को एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए आगे बढ़ने में मदद करना है।
0: इन योजनाओं के दायरे में देश की 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आती हैं, जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय।
1: और एजुकेशन से जुड़ी इन योजनाओं में स्कॉलरशिप्स के साथ हायर एजुकेशन और रिसर्च को सपोर्ट करने वाली फेलोशिप भी शामिल है।
0: तो सबसे पहले बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की।
1: बिल्कुल, मुख्य रूप से क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें पिछले वर्ष की परीक्षा में कम से कम 50% मार्क्स और परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 तक होने की एलिजिबिलिटी बताई गई है।
0: यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को स्कूल एजुकेशन जारी रखने में इससे मदद मिल सकती है।
1: इसके बाद आती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें कक्षा 11 से PhD लेवल तक के विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। इसमें एडमिशन और ट्यूशन फी के साथ मेंटेनेंस जैसी एजुकेशन रिलेटेड खर्चों के लिए सहायता दी जाती है। आयशा,
0: इसमें मिनिमम 50% मार्क्स और फैमिली इनकम की एनुअल लिमिट 2,00,000 रुपए तक बताई गई है।
1: और फिर आती है मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप, जो कि प्रोफेशनल और टेक्निकल UG और PG कोर्सेज जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिसिन करने वाले विद्यार्थियों के लिए है।
0: बिल्कुल, इसमें भी 50% मार्क्स और फैमिली इनकम को ₹2.5 लाख पर एनम तक की एलिजिबिलिटी बताई गई है।
1: अच्छा, एक खास बात और आयशा, इन स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज में 30% स्कॉलरशिप गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ईयरमार्क की गई है।
0: क्या बात है, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ बेटियों की हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की गई है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और स्कॉलरशिप का फायदा सिर्फ फीस तक सीमित नहीं होता, बुक्स, स्टडी मटेरियल और दूसरे एजुकेशन एक्सपेंसेस में मदद मिलने से विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बिना आर्थिक दबाव के जारी रख सकते हैं।
0: और हायर एजुकेशन और रिसर्च की बात करें तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप यानी MANF का भी उल्लेख आता है।
1: जी हाँ दोस्तों, MANF के तहत माइनॉरिटी स्कॉलर्स को MPhil और PhD जैसी हायर रिसर्च डिग्री के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का उद्देश्य रहा है।
0: यानी कि एजुकेशन का सफर स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन और रिसर्च तक अलग अलग स्तरों पर सपोर्ट करने की सोच साफ दिखाई देती है।
1: अच्छा, तो अब सवाल है कि इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें?
0: बिल्कुल, इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP पर जाना होगा। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन से पहले 1-time रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना मैंडेटरी है।
1: अच्छा, तो OTR के बाद विद्यार्थी अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या फिर मेरिट का मिंस स्कीम सिलेक्ट करके एप्लीकेशन भर सकता है।
0: बिल्कुल, और फॉर्म भरते समय पर्सनल, एकेडमिक और बैंक डिटेल्स बिल्कुल सही भरना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फी रिसीट और इंस्टीट्यूशनल वेरिफिकेशन फॉर्म जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, आधार और एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बहुत ज़रूरी है। DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
0: और एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है।
1: पहले होता है लेवल 1 वेरिफिकेशन स्कूल या कॉलेज की ओर से, और फिर होता है लेवल 2 वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लेवल अथॉरिटी की ओर से किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद एलिजिबल स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस DBT के जरिए बैंक अकाउंट में मिलती है।
0: तो श्रोताओं, अगर आप एलिजिबल हैं तो अपनी एलिजिबिलिटी, इनकम लिमिट और डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लीजिए।
1: और अगर आपके आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसे इन स्कॉलरशिप्स की जरूरत हो सकती है तो ये जानकारी उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों,
0: क्योंकि कई बार स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी जरूरत सही जानकारी होती है।
1: और सही समय पर मिली जानकारी किसी विद्यार्थी की पढ़ाई जारी रखने का कारण बन सकती है।
0: तो अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे ऐसी योजनाओं की जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के युवाओं को एजुकेशन स्किल्स के साथ जोड़कर रखने की कोशिश करती है।
1: लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं हमारी आज की महफिल का अगला गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, अभी आपने सुना वरुण जैन और राघव चैतन्य की आवाज़ में बहुत ही सुंदर गीत फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, जिसका संगीत तैयार किया था सचिन जिगर ने और बोल लिखे थे इंद्रनील ने।
3: श्रोताओं, अभी हमने माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के विद्यार्थियों के लिए कई स्कॉलरशिप्स की बात की। वहीं कीर्ति, अगर बात हो बेटियों की पढ़ाई और उनके सपनों की, तो उसके लिए एक खास स्कॉलरशिप भी है।
2: बिल्कुल आयशा, हम बात कर रहे हैं बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप की, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी

0: कम्युनिटीज की मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स को उनके स्कूल एजुकेशन जारी रखने में मदद करती है।
1: और इस स्कॉलरशिप की खास बात ये है कि इसका लाभ क्लास 9th से लेकर 12th तक की स्टूडेंट्स को मिल सकता है।
0: जी हाँ, इसमें नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय की छात्राएं शामिल हैं।
1: बात करते हैं इसके फाइनेंशियल सपोर्ट की। आखिर एक स्टूडेंट के लिए ये स्कॉलरशिप किस तरह से मददगार हो सकती है?
0: क्लास 9th और 10th की छात्राओं को 5,000 प्रतिवर्ष और वहीं पर क्लास 11th और 12th की छात्राओं को 6,000 प्रतिवर्ष की स्कॉलरशिप दी जाती है। आयशा,
1: राशि शायद सुनने में हमें उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद परिवार के लिए ये अमाउंट बुक्स, स्टेशनरी, फीस या फिर पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों में काफ़ी मदद कर सकता है।
0: बिल्कुल, और असली इम्पैक्ट सिर्फ पैसे का नहीं है। जब किसी लड़की को स्कॉलरशिप मिलती है तो उसे अपनी स्कूलिंग जारी रखने के लिए एक इनकरेजमेंट भी मिलता है।
1: और यही वो उम्र है जब कई लड़कियां अपने फ्यूचर करियर के बारे में सोचना शुरू करती हैं। अगर इस स्टेज पर एजुकेशन का रास्ता उनके लिए आसान हो जाए तो आगे प्रोफेशनल कोर्सेज तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: इस स्कॉलरशिप के लिए आपको पिछली क्लास में कम से कम 50% मार्क्स होना ज़रूरी बताया गया है। साथ ही परिवार की कुल वार्षिक आय 2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
1: यानी इसमें मेरिट के साथ साथ फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को भी ध्यान में रखा जाता है।
0: बिल्कुल आयशा, और इस स्कॉलरशिप को मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी कि MAEF मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत एडमिनिस्टर करता है।
1: अब एक बात यहाँ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये स्कॉलरशिप क्लास 9th से लेकर 12th तक की स्कूल एजुकेशन के लिए है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप आगे कंटिन्यू नहीं होती।
0: लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि कक्षा 12वीं के बाद सपोर्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं। आगे स्टूडेंट अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार AICTE प्रगति, पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप और अन्य दूसरी हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
1: यानी बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप एक तरह से स्कूल एजुकेशन से हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने के रास्ते को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल, खासकर उन छात्राओं के लिए जो आगे इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर किसी दूसरी प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहती हैं। उनके लिए क्लास 9th और 9th से 12th तक एजुकेशन का स्मूथली कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: और अगर कोई छात्रा इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती है तो उसे किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कीर्ति?
0: आयशा, आमतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट, स्कूल इनरोलमेंट प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है।
1: और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है?
0: दिए गए विवरण के अनुसार एनुअल एप्लीकेशन विंडो आमतौर पर सितंबर से दिसंबर के बीच रहती है और आवेदन मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
1: तो छात्राओं और उनके पेरेंट्स के लिए एक छोटी सी सलाह कि एप्लीकेशन विंडो का इंतज़ार करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें।
0: बिल्कुल, क्योंकि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डेडलाइन या फिर डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से कहीं ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो ये ज़रूर अफसोस की बात होगी दोस्तों।
1: और मुझे लगता है कि इस स्कॉलरशिप का सबसे खूबसूरत संदेश यही है कि बेटे की पढ़ाई उसके आज को नहीं बल्कि उसके आने वाले कई कलों को बदल सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा। एक लड़की जब एजुकेशन पूरी करती है ना तो उसके सामने करियर के ज़्यादा विकल्प होते हैं, अपने फैसले लेने का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने सपनों को अपनी मेहनत से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ती है।
1: तो अगर आपके परिवार या आसपास की कोई ऐसी छात्रा है जो क्लास 9 से लेकर 12th में पढ़ रही है और इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उसे बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर बताइए,
0: क्योंकि कभी कभी एक छोटे से स्कॉलरशिप किसी बेटी की पढ़ाई को रुकने से बचा सकती है दोस्तों।
1: और एक बेटी की पढ़ाई आगे बढ़े तो उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है।
0: इसी उम्मीद के साथ अब आगे बढ़ते हैं युववाणी के अगले हिस्से की और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, लवियापा फिल्म से आपने ये गीत सुना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, जिसे लिखा था गुरप्रीत सैनी ने और संगीत दिया था तनिष्क बागची ने।
1: आयशा जी, कैसा नाम सामने आया ना कि सुनते ही अच्छा लगता है। नई मंजिल, नाम में ही ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि चलो एक मौका और, इस बार थोड़ा अलग रास्ता चुनते हैं।
0: बिल्कुल, इसकी कहानी इसलिए भी खास है कि कई बार कई युवा किसी मजबूरी के तहत पढ़ाई से पीछे छूट जाते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें लगता है कि अब आगे क्या होगा, लेकिन जिंदगी उन्हें दूसरा रास्ता देती है और तस्वीर बदल देती है।
1: और नई मंजिल की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई थी। 8 अगस्त 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने शुरू किया था, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के उन युवाओं के लिए जो स्कूल छोड़ चुके थे या जिनके पास फॉर्मल स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं था।
0: यहाँ एक बात बहुत खास थी कि इसे सिर्फ पढ़ाई पूरी करने की स्कीम नहीं बनाया गया, इसकी सोच प्रैक्टिकल थी, जहाँ पढ़ाई भी और हुनर भी था।
1: बिल्कुल, इसमें ब्रिज एजुकेशन के जरिए फॉर्मल एजुकेशन से जुड़ने का मौका और साथ में मार्केट ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग दी जाती थी,
0: यानी कि किताब और स्किल दोनों हाथों में। और आज के समय में यही कॉम्बिनेशन सबसे ज़रूरी है।
1: इस ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स, बेसिक आईटी, इंग्लिश, हेल्थ और लाइफ स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता था। आयशा,
0: बिल्कुल, हालांकि इसका एक करंट अपडेट ये है कि नई मंजिल अब अलग स्कीम के रूप में नहीं चल रही है, बल्कि इसे पीएम विकास यानी कि प्रधानमंत्री विरासत के संविधान संवर्धन के साथ कवरेज किया जाता है, लेकिन नाम या फ्रेमवर्क बदलने से उसकी खूबसूरती नहीं बदली है।
1: बिल्कुल, कभी कभी जिंदगी हमें रास्ता बदलने पर मजबूर करती है, वही नया रास्ता आगे चलकर हमारी सबसे अच्छी मंजिल बन जाता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए इसका नाम सिर्फ नई मंजिल नहीं बल्कि उम्मीद की नई मंजिल हो सकता था।
1: बिल्कुल आयशा, नई मंजिल के बाद अब एक और नाम है जो सुनते ही मतलब कि पूरी कहानी बता देता है, सीखो और कमाओ। मुझे तो इसका कॉन्सेप्ट ही बड़ा प्रैक्टिकल लगता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ट्रेनिंग लेने की नहीं थी बल्कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के युवाओं को मार्केट ओरिएंटेड स्किल सिखाकर उन्हें एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करने की कोशिश भी थी,
1: यानी सीखते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा

0: में बढ़ना।
1: बिल्कुल, इसमें 14 से 45 वर्ष तक के माइनॉरिटी यूथ को टारगेट किया जाता था। महिलाओं को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए 33% सीट फीमेल के लिए रिजर्व की गई थी और सर्टिफिकेट दिया जाता था।
0: वाह, बिल्कुल, क्या बात है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, जिसे लिखा था आसिम रजा ने।
1: तो दोस्तों, वक्त है हमारे उस सेगमेंट का जिसका इंतजार शायद बहुत से युवा करते हैं। जी हाँ, रोजगार अपडेट।
0: तो अगर आप भी इन दिनों किसी फॉर्म, वैकेंसी या रिजल्ट पर नजर लगाए बैठे हैं तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। आज की पहली शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए काम की खबर से। MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के ऑनलाइन एप्लीकेशंस की लास्ट डेट 18 अगस्त 2026 है दोस्तों।
1: और रेलवे की तरफ नज़र रखने वालों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी अपडेट है। RRB जूनियर इंजीनियर 2026 के लिए एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स के पास तैयारी के साथ एप्लीकेशन के लिए भी अच्छा समय है।
0: बिल्कुल, बैंकिंग एस्पिरेंट्स को हम बिल्कुल नहीं भूल

0: SBI जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त है, जबकि IBPS क्लर्क के लिए 21 अगस्त 2026 आखिरी दिनांक है। यानी बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए अगस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
1: और अगर आपकी नज़र रिजल्ट्स पर है तो करंट अपडेट्स में नर्सिंग एडमिशन PNST रिजल्ट और ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिजल्ट जैसी अपडेट्स भी शामिल है।
0: बिल्कुल, यानी वैकेंसी हो या रिजल्ट, एक बात याद रखिए कि सिर्फ नोटिफिकेशन देखकर आगे मत बढ़िए, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को जरूर चेक करिए।
1: बिल्कुल, और जिनका रिजल्ट आया है उन्हें हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं, और जो अभी तैयारी में लगे हैं आपकी मेहनत भी एक दिन रिजल्ट की उस लिस्ट में जरूर दिखाई देगी।
0: बिल्कुल, क्योंकि मौका कब दरवाजे पर दस्तक दे दे पता ही नहीं चलता।
1: तो दोस्तों, आज की हमारी ये खूबसूरत मुलाकात अब यहीं खत्म करने का वक्त आ गया है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आज हमने कुछ बातें मिलकर सोची, कुछ नई चीज़ें जानी, कुछ ऐसी कहानियां मिली जिससे शायद कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी आपके साथ जुड़ी रहेंगी।
1: बिल्कुल, और यही तो हमारी कोशिश रहती है, क्यों आयशा?
0: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए आप आकाशवाणी उज्जैन के FM 102.5 MHz के साथ और सुनते रहिए युवाओं की आवाज़, युवाओं की बातें और युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे थे हमें, यानी कि आयशा
1: और कीर्ति को। सुनते रहिए युववाणी।
0: नमस्कार, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार, मैं हूं आपका सखा आदेश शिंदे। आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं का भक्ति संगीत के कार्यक्रम भजन संध्या में हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों संपूर्ण भारतवर्ष श्रावण मास की उसी दिव्य आभा से आलोकित है जिसे भक्ति और आराधना का सबसे पवित्र माह माना जाता है। कहते हैं इस माह में शिव भक्ति का जो सुयोग बनता है वह वर्ष के किसी अन्य समय में दुर्लभ है। और इसी क्रम में कल सोमवार को हमारी अवंतिका नगरी प्रिय उज्जैनी एक बार पुनः उस अलौकिक दृश्य की साक्षी बनेगी जब स्वयं भगवान श्री महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। अपने भक्तों के मध्य उनका हाल जानने और उन्हें अपनी करुणा से आप्लावित करने। भक्ति का यह भाव केवल शिव आराधना तक सीमित नहीं, यह तो उस संपूर्ण चेतना का नाम है जो मनुष्य को परमात्मा के हर स्वरूप से जोड़ती है, चाहे वे भोलेनाथ हो, भगवान श्री कृष्ण हो अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जैसा कहा जाता है, डिवोशन इज नॉट अबाउट विच नेम वी कॉल गॉड बाय, बट अबाउट द लव विथ विच वी कॉल हिम। यही भाव आज की इस भजन संध्या का मूल स्वर है। आइए इसी श्रद्धा के साथ आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारा पहला भजन समर्पित है भगवान शिव को, जो अत्यंत सरल हृदय के स्वामी हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की सामान्य भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। न उन्हें बड़े अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है, न किसी वैभव की, बस एक निश्चल हृदय ही उनके लिए पर्याप्त है। यही सहजता इस भजन में बड़े मधुर स्वरों में व्यक्त हुई है, जहां भक्त अपने भगवान भोलेनाथ के प्रति अपने प्रेम को अत्यंत आत्मीयता से प्रकट करता है। तो सुनिए मैथिली ठाकुर के स्वर में यह भजन।

श्रोताओं, भगवान शिव के इसी करुणामयी स्वरूप को आगे बढ़ाते हुए अब हम सुनेंगे एक ऐसी रचना जिसमें भक्त भगवान शंकर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पालनहार हैं। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे आज भी अपने भक्तों को हर संकट से उबारने वाले परम आश्रयदाता हैं। यह भजन उसी शरणागति भाव को समर्पित है। तो प्रस्तुत है प्रीति सागर के स्वर में अगला भजन।

0: दीदी, नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: श्रोताओं, अब हम भक्ति की धारा को मोड़ते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का यह स्वरूप सदैव अपने भक्तों के कष्टों का हरण करने वाला रहा है। जिस प्रकार उन्होंने गजेंद्र की पुकार सुनकर तत्काल सहायता की थी, उसी प्रकार वे आज भी अपने आश्रितों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। यह भजन भगवान के उसी करुणामय और वात्सल्यपूर्ण स्वरूप की स्तुति में रहता है।

भक्ति के इसी विस्तार में अब हम स्मरण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का, जिनका संपूर्ण जीवन ही आदर्श और मर्यादा का प्रतीक रहा। कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि में राम नाम से बढ़कर कोई मधुर और कल्याणकारी शब्द नहीं। यह नाम स्वयं में ही सौंदर्य और सुख का सागर समेटे हुए है। इसी भाव को यह भजन अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत करता है, जिसमें भक्त राम नाम की महिमा का गुणगान करता है।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए अब हम सुनेंगे एक ऐसा भजन जो उनके मुरलीधर स्वरूप को समर्पित है। वृंदावन की गलियों में जब भगवान अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते थे तो संपूर्ण प्रकृति ही मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गोपियां अपनी सुध-बुध खोकर उस दिव्य संगीत की ओर खींची चली आती थीं। यही भक्ति भाव इस भजन में अत्यंत मनोहारी ढंग से चित्रित किया गया है। तो प्रस्तुत है ओम व्यास के मधुर स्वर में यह भजन।

श्रोताओं, श्रावण माह की इस पावन बेला में जब कल स्वयं भगवान श्री महाकालेश्वर महाराज अपनी सवारी के माध्यम से अपने भक्तों के मध्य पधारेंगे, हमने आज की इस भजन संध्या में भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम तीनों ही स्वरूपों की भक्ति का आनंद लिया। यही तो भारतीय भक्ति परंपरा का सौंदर्य भी है, जहां ईश्वर के प्रत्येक स्वरूप के प्रति समान श्रद्धा और प्रेम का भाव विद्यमान रहता है। जैसा कहा जाता है, इन एवरी नेम ऑफ गॉड द सेम इटर्नल लाइट शाइन्स, यही सत्य आज इन भजनों के माध्यम से हमने अनुभव किया। आशा है यह प्रस्तुति आपके हृदय को भक्ति रस से परिपूर्ण कर सकी होगी। भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। भजन संध्या के इस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन संध्या। शाम के 6:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

नमस्कार, फिल्म संगीत में मैं आदेश शिंदे आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस फिल्म संगीत के अगले 30 मिनट में हम कुछ ऐसे पल बताएंगे जो पल सुरों में डूबे हैं और भावनाओं में भीगे हैं। दोस्तों, जिंदगी में जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत हमारी आवाज बन जाता है। हमारी खुशी हो या हमारा दर्द, हमारा इंतजार हो या हमारा विश्वास, हर एहसास को गीत बड़ी ही सुंदरता से बयां कर देते हैं। आज के इस विशेष अंक में हम आपके लिए चुनकर लाए हैं कुछ ऐसे ही गीत जो प्रेम की अलग अलग गहराइयों को छूते हैं। तो आइए बिना देर किए इस भावनाओं भरे संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, कभी कभी

किसी अपने के जाने के बाद उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं, हर कोने में, हर पल में, हर उस जगह में जहां कभी उनका साथ था। दिल किसी तर्क को नहीं मानता, वो बस इंतजार करता रहता है कि शायद वो लौट आए। दिल कहता है कि यह रिश्ता अभी पूरा नहीं हुआ, कोई अधूरी बात, कोई अधूरी याद अब भी बाकी है, और शायद इसी अधूरेपन को मुकम्मल करने के लिए वो एक दिन फिर लौट आएगा। फिल्म बर्फी का ये गीत उसी अधूरेपन की, उसी खामोश तड़प की कहानी कहता है। अरिजीत सिंह ने अपनी गहरी और दर्द भरी आवाज से इस एहसास को इतनी शिद्दत से गाया है कि सुनने वालों का भी दिल भर आता है।

श्रोताओं कैसा लगा ये गीत? यकीनन इसने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा, क्योंकि इंतजार का दर्द तो हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया है। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रेम की जो बड़ा ही सीधा है, सच्चा है, बिना किसी बनावट के। फिल्म टू स्टेट्स का ये गीत उस एहसास को बयां करता है जब प्रेमी को अपनी प्रेमिका के बिना जिंदगी अधूरी लगने लगती है। जैसे रोशनी हो पर गर्माहट न हो, जैसे सूरज हो पर उसमें आग न हो, जैसे चांदनी बरस रही हो पर फिर भी हाथों में अंधेरा ही अंधेरा लगे। ये गीत बताता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उस साथी की मौजूदगी से मिलने वाली ऊर्जा और जीवन का नाम है। प्रस्तुत है के मोहन और यशिता शर्मा की आवाज में यह गीत।

दोस्तों, प्रेम की शुरुआत जहां मिलन की खुशी किससे होती है, वहीं अपनों की चिंता भी उतनी ही गहरी होती है। कभी-कभी हम अपने किसी करीबी दोस्त, किसी अपने की तकलीफ को महसूस तो करते हैं, पर उसे शब्दों में शायद बयां नहीं कर पाते। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे बिना ये दूरियां भी बहुत भारी लगती हैं। फिल्म छिछोरे का ये गीत उसी चिंता की, उसी अपनेपन की कहानी कहता है, जहां एक दिल दूसरे दिल का हाल जानना चाहता है बिना किसी शिकायत के, बस एक कोमल पुकार के साथ। अरिजीत सिंह की आवाज में इस गीत की सादगी और गहराई दोनों साफ झलकती है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म छिछोरे का यह गीत, जिसे अपने स्वर दिए थे अरिजीत सिंह ने, संगीत था प्रीतम का और बोल थे अमिताभ भट्टाचार्य के। प्रेम की शुरुआत, जैसा हम जानते हैं, अक्सर एक नज़र से होती है, उस पल से जब दिल अचानक ठहर सा जाता है और सामने वाले व्यक्ति की खूबसूरती में खो जाता है। कहते हैं जिसे देखकर हिरण भी चलना सीख जाए, जिसकी आवाज़ सुनकर कोयल को अपने सुर की पहचान हो जाए, ऐसा कोई इतना खूबसूरत आखिर कैसे हो सकता है। फिल्म स्त्री 2 का ये गीत उसी पहली नज़र के, उसी सुंदर एहसास के इर्द गिर्द बुना गया है, जहां शब्द भी कम पड़ जाते हैं और बस आंखें ही सब कुछ कह देती हैं। विशाल मिश्रा की आवाज़ ने इस गीत में एक अलग ही मिठास घोल दी है।

0: पानी की हर बूंद है अनमोल,
1: बहने ना दें इसे बेमोल।
0: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
1: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दे हरियाली का गहना।
2: श्रोताओं, जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण संदेश के पूर्व आपने सुना फिल्म स्त्री 2 का यह गीत, जिसे आवाज दी थी विशाल मिश्रा ने, संगीत था सचिन जिगर का। दोस्तों, प्रेम तभी सार्थक होता है जब उसमें साथ निभाने का यकीन हो, जब हालात चाहे जैसे भी हो, दो दिल एक दूसरे का हाथ थामे रहने का वादा करें। फिल्म कबीर सिंह के इस गीत ने हर उस दिल को अपनी आवाज दी है जो अपने साथी से कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे किस्मत से लड़ना पड़े या खुद ईश्वर से आपको मांगना पड़े, मैं हर दिल में आपका बनकर रहूंगा। ये गीत विश्वास का, समर्पण का और अटूट साथ का प्रतीक बन चुका है।

दोस्तों, जब प्रेम में एक दूसरे के प्रति यकीन गहरा होता है तो वो वादा और भी खूबसूरत हो जाता है। फिल्म स्रूट 2 का यह अगला गीत उसी मीठे वादे की कहानी कहता है, जहां प्रेमी अपने साथी से कहता है कि चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, चाहे राहें कितनी भी लंबी क्यों न हो जाएं, हम तुम्हारे ही थे और तुम्हारे ही रहेंगे। वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज़ों में इस गीत में एक अनोखी कोमलता भर दी है जो सीधे दिल को छूती है।

तो दोस्तों, आज की फिल्म संगीत में हमने साथ मिलकर महसूस किए प्रेम के कई रंग, कभी बिछड़न का दर्द, कभी साथ होने की ऊर्जा, कभी अपनों की फिक्र, कभी पहली नज़र की मिठास, कभी अटूट वादा और कभी संपूर्ण समर्पण। यही तो संगीत की असली ताकत है, जो शब्दों से भी आगे जाकर सीधे हमारी आत्मा से बात करता है। उम्मीद है आज की ये प्रस्तुति आपके दिल के करीब रही होगी। अब आपसे विदा लेने का समय है, लेकिन जल्द ही मुलाकात होगी और एक खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रूपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी

0: कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठनकुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.5 MHz पर साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

शाम के 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 7:21 पर आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम मालवी गीता री गूंज। रात 8 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, और 8:15 पर भोपाल केंद्र से ही कार्यक्रम डगर विकास की का अनुप्रसारण होगा। रात 8:30 पर आपको इंतजार रहेगा आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत फिल्म संगीत का। रात 8:45 से आप आकाशवाणी दिल्ली के अनुप्रसारण का आनंद ले सकेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात्रि 9 अनुप्रसारित होंगे। पर भोपाल केंद्र से सुनिए उर्दू समाचार। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम अनुप्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर, और रात 10 होगा कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित इन कार्यक्रमों के उपरांत आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार

समाचार 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर अनुप्रसारित होंगे। रात्रि 11:10 पर आप सुन सकेंगे FM गोल्ड के कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

0: श्रोताओं, अब आपको कल यानी 17 अगस्त 2026 सोमवार को प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 5:50 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। छह बजकर 5 पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वंदनवार। इसके उपरांत 6:35 पर विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित होगा श्री रामचरितमानस गान। सुबह 6:45 पर अनुप्रसारण होगा विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम संगीत सरिता का। सुबह 7 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:20 पर होगा आकाशवाणी उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिए समाचार प्रभात सुबह 8 और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष कार्यक्रम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 होगा कार्यक्रम उज्जैन दर्शन। 10:30 पर आप सुन सकेंगे महिला सभा। 11 के उपरांत आप विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:09:50 हुए हैं और कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: श्रोताओं, ये थे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
5: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
4: जाओ भाई।
6: RBI कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय और जबलपुर और सागर सहित

0: 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुविधा पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति का रोमांचक अनुभव देगी। इसके बाद उन्होंने दशहरा मैदान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया और अटल पथ का लोकार्पण भी किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्री वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें आजाद शत्रु कहा जाता था। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज भोपाल में श्री अटल जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया। स्थानीय मानसरोवर डेंटल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं के विचार जाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण कार्यक्रम करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने नेपाल की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और मजबूत करना है। जनरल सेठ नेपाल में टुंडी खेल के सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और नेपाली सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेंगे। इसके बाद वे नेपाली सेना प्रमुख के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में भी शामिल होंगे। उज्जैन में नागपंचमी पर वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट आज रात 12 बजे खुलेंगे। इसके बाद लगातार 24 घंटे तक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इस बार नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार का संयोग होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन, प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर के साथ भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य सरकार के अनुसार स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कल यानी 17 अगस्त से किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रबी सीजन के लिए 20 अगस्त से हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2026 के पुरस्कार वितरण

और समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेलिंग बोट शो का अवलोकन किया और विभिन्न खेल विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल समाप्ति

बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आज चीन ने कतर को 118-86 से हरा दिया। मुकाबले में चीन की टीम ने शुरुआत से दबदबा बनाए रखा और पूरे मैच में अपना नियंत्रण कायम रखते हुए कतर पर 52 अंकों से शानदार जीत दर्ज की। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज प्रदेश के 18 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले शामिल हैं। वहीं भोपाल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों में भी 16 से 18 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। खंडवा में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद ने रेवा सेवा समागम नर्मदा संवाद कार्यशाला आयोजित की। इसमें नर्मदा और सहायक नदियों के संरक्षण, घाट संस्कृति, प्राकृतिक खेती और परिक्रमा मार्ग की सुविधाओं पर चर्चा हुई। पांडुर्ना में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम पीपल पानी में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 600 किलोग्राम महुआ लान नष्ट किया। नर्मदापुरम जिले के तवानगर स्थित शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। प्रदेश के 200 से अधिक विद्यालयों में ये एकमात्र आदर्श आवासीय विद्यालय है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। अशोकनगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों को अगस्त और सितंबर माह की राशन सामग्री 31 अगस्त तक एकमुश्त वितरित की जाएगी। इसके लिए पीओएस मशीन पर हितग्राहियों को 2 बार अंगूठा लगाना होगा। धार जिले में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। पशुपालन विभाग द्वारा जिले के सभी पशुपालकों से निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से टीका कराने की अपील की गई है। और छिंदवाड़ा के चौराई में एक तेज रफ्तार कार बिजली पोल तोड़ते हुए एक खेत में जा गिरी। हादसे में गोपालपुर निवासी 14 वर्षीय मंगल यादव की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए गए हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, ओला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित है।
2: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। शाम के 7:21 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं कुलदीप शर्मा।

तो राम राम, जय श्री महाकाल। दादा हुणो एक बार फिर तमारो सबको स्वागत है। तो कैसा हो तम सब? मौज मैंने मजे में तो हुनी। हूँ तमारो भाई कुलदीप शर्मा एक बार फिर तमारो सबको स्वागत करूँ अपना इना विशेष कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज में। तो भाई मैं मालवा की मिट्टी में कुछ ऐसी मिठास है कि एको नाम आते ही मन में अपनोपन जागी उठे। इकी हवा में सादगी है, इका गाँव हूं में अपनोपन है, और इकी जो बोली है उनमें तो जैसे मिठास गुड़ी थकी है। भाई बहन, उन्हों मालवी बोली खाली बात करवा को एक जरियो नहीं है, या तो मालवा की पहचान है। इकी मिट्टी की आवाज़ है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई एक ऐसी धरोहर है जिनमें मालवा को रहन सहन, संस्कार और जीवन दर्शन तक समायो है। मालवी में कोई पूछे कि कई हाल है तो बस बात जो हालचाल तक सीमित नहीं रहेगी, इनमें अपनोपन भी हुई है। कोई कहे कि भैया आओ बैठो तो इनमें खाली बैठवा को नोत तो नहीं है, बल्कि दिल से स्वागत करवा की भावना भी हुई है। मालवी की सबसे बड़ी खासियत इकी सहजता है। इकी जो बोली है इनमें बात सीधी दिल तक पहुंची जाई है। खेत की मेड़ पे बैठे हुई किसान हो, घर का आंगन में बैठिया दादा दादी नाना नानी हो, या गाँव की चौपाल या बाजार की गली में माल

भी हर जगह अपनो रंग बिखेरती दिखे। देखो ये सब बात तो अपनी होती रहेगी, अब बात मालवी बोली की चली है तो अपन मालवी में अपना समाचार भी जान लांगा। तो आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है अपना मालवी समाचार।

तो नमस्कार, राम राम। समाचारों का साथे हूँ तमारो भाई कुलदीप शर्मा। सबसे पहला इन बुलेटिन का खास समाचार। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे प्रधानमंत्री अने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप में खिलाड़ी हुन के पुरस्कृत करियो। अने नागपंचमी पे आज रात 12 बजे खुलेगा उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट। अब ये समाचार विस्तार से। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि का अवसर पे उनके श्रद्धांजलि अर्पित करी रियो है। गृहमंत्री अमित शाह ने बोलियो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनवा का पहला लंबा समय तक विपक्ष में रहा था, फिर भी उनने कदी सिद्धांत हुन से समझौतो नहीं करियो। अने यू ही कारण है कि उनके अजात शत्रु बोलियो जातो थो। श्री शाह ने यह बात भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा को अनावरण का अवसर पे बोली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पे आज दिल्ली में उनका स्मारक सदैव अटल पे पुष्पांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज भोपाल में श्री अटल की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में बोट क्लब स्थित वाटर स्पोर्ट अकादमी में आयोजित राजा भोज मल्टी क्लास सेलिंग चैंपियनशिप 2026 का पुरस्कार वितरण अने समापन समारोह में सहभागिता करी। मुख्यमंत्री ने सेलिंग बोट शो को अवलोकन करियो अने विभिन्न खेल विधाहुन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करवा वाला खिलाड़ी हुन के पुरस्कार प्रदान करी के सम्मानित करियो। उनने खिलाड़ी हुन को उत्साहवर्धन करता हुआ उनका उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गया है। यात्रा को उद्देश्य दो ही देश उनका बीच रक्षा सहयोग अने सैन्य समझौता उनके और मजबूत करनो है। जनरल सेठ नेपाल में टुंडी खेल का सेना मंडप में पुष्पांजलि अर्पित करेगा अने नेपाली सेना का मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करेगा। एकाबाद भी नेपाली सेना प्रमुख का साथे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पे बातचीत करेगा अने राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में भी शामिल होगा। प्रदेश में किसान उनका लिए उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य सरकार के अनुसार स्टॉक मिलान की प्रक्रिया पूरी होवा का बाद काल यानी 17 अगस्त से किसान हुन के उनकी आवश्यकता का अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रबी सीजन का लिए 20 अगस्त से हर किसान हर घर हर खेत खाद अभियान शुरू होएगा। उज्जैन में नागपंचमी पे आज रात 12 बजे खुलेगा नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट। साल में खाली एक बार खुलवा वाला इना मंदिर में पट खुलवा का बाद लगातार 24 घंटा श्रद्धालु दर्शन करी सकेगा। इन बार नागपंचमी अने सावन को तीसरो सोमवार को संयोग होवा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुन की पहुंचवा की संभावना है। मंदिर समिति अने प्रशासन ने दर्शन प्रवेश अने निकासी का लिए अलग अलग व्यवस्था हुन करी है। नागचंद्रेश्वर मंदिर का साथे भगवान श्री महाकालेश्वर का भी दर्शन का लिए विशेष इंतजाम कराया गया है। प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हुई गयो है। जबलपुर, रीवा अने शहडोल संभाग में अगला 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी करी गई है। आज 18 जिला हुन में तेज बारिश को अलर्ट है। इनमें जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, रीवा, सीधी अने सिंगरौली शामिल है। भोपाल, ग्वालियर अने चंबल संभाग का कुछ जिला हुन में 16 से 18 अगस्त तक तेज बारिश को आसार है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करी है। ई था आज का अपना मालवी समाचार।

भाई बहनों, मालवी बोली में रिश्ता उनकी मिठास भी अलग ही लागे है। दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, भाई बहन, हर रिश्तों जब मालवी में पुकारियो जाए तो उनमें एक अलग ही अपनोपन महसूस हुई है। बुजुर्ग उनकी मालवी की बात उनमें तो बरसों को अनुभव छुपियो थको है। उनके जो कोई किस्सा सुनाया थको है, कोई कहावत कही या जीवन में कोई सीख दी, तो ऐसो लगे है जैसे केवल बात नहीं हुई रही है बल्कि पूरो एक पीढ़ी अपनो अनुभव अगली पीढ़ी तक पहुँचाई रही है। मालवी की यह मिठास लोकगीत हूं में भी और घुली के सामने आई है, क्योंकि जब मालवी जो है अपनो मालवो गाय है तो केवल सुर नहीं निकले है, मालवा की मिट्टी बोले है, खेत बोले है, रिश्ता बोले है, त्योहार बोले है और गांव की जिंदगी बोले है। इकलिए मालवी बोली अने

0: लोकगीत एक दूसरा से अलग नहीं है। बोली लोकगीत के शब्द दे है और लोकगीत उन बोली का भाव के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाए है। अने शायद याज वजह है कि मालवी गीत सुनते ही कई बार मन में बचपन की याद जागी उठे है। गांव को आंगन याद ही जाए, कोई पुरानी आवाज कान उन में गूंजे है और मन अपने आप ही मिट्टी से जुड़ी जाए है। यानी मालवी बोली खाली बोलवा की भाषा नहीं है, या मालवा की पहचान है, मालवा का मन की आवाज है और अपना सांस्कृतिक जीवन की एक मजबूत डोर है। भाई बहनों, बोली और गीत तो अपनी संस्कृति को एक रंग है, पर मालवा की संस्कृति तस्वीर में लोक कला भी एक खास रंग भरे है। लोक कला के जब थोड़ी गहराई से देखो तो इनमें कोई कला या परंपरा नहीं दिखाई दे, बल्कि उन समय का लोग उनका सोच, उनका रहन सहन, मान्यता और जीवन को अनुभव दिखाई दे है। कोई लोकचित्र है, लोक कथा है, या पारंपरिक हस्तकला हो, या जीवन से जुड़ी कोई कला, हर एक अपना समय की कोई ना कोई कहानी अपना सामने रखे है। यानी लोक कला खाली बीता समय की निशानी नहीं है, बल्कि समय के समझने को एक माध्यम भी है, जिनमें अपना अतीत और वर्तमान का बीच एक सुंदर संभव दिखाई दे। अने इन्हीं लोक कला उनके समझने और इका पीछे छुपिया सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ के जानने में कला शिक्षा की भी अपनी एक खास भूमिका है। जब विद्यार्थी कला के खाली देखे नहीं, बल्कि उका बारा में पढ़े, सवाल करे और विचार करे, तो उकी समझ खाली कला तक सीमित नहीं रहे, वो समाज, संस्कृति और मानवीय जीवन का अलग अलग पहलू उनके नई नज़र से देखना लगे है। इका लिए माध्यम जो है, विद्यार्थी अपनी सांस्कृतिक विरासत का खाली पुरानी परंपरा नहीं मानी के है, बल्कि उको महत्व और उकी आज की प्रासंगिकता के भी समझे है। तो लोक कला अपना समाज की कैसी तस्वीर है, अपना सामने कैसे रखे है, और उका जो कला शिक्षा विद्यार्थी उनके इन्हीं लोक कला उनके समझने और इका सामाजिक महत्व के जानने में कैसे काम आई, यो भी बहुत जानो जरूरी है। तो आज अपना साथ ऐसी ही चीज़ के लिए जुड़िया है पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना सिंह जी। तो आओ सुना उनसे इनकी भेंट वार्ता, जिनने इनने हमारे कहीं कहीं बताया हुआ कॉलेज का बारे में और पढ़ाई का बारे में, यो भी अपने जानना। तो आओ सुना यह भेंट वार्ता। आज हमारे साथ जुड़े हैं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर कल्पना सिंह। मैम, आपका आकाशवाणी उज्जैन में बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की वर्तमान पहचान और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए।
1: देखिए, पीएम प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की एक अवधारणा थी, जिसने 2024 जुलाई माह में मूर्त रूप लिया और इसमें प्रदेश के 55 जिलों के 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने के साथ ही एक उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था की शुरुआत हुई और एक उच्च स्तरीय शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ऐसी पहल शासन के द्वारा की गई। जितने भी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, इसमें प्राचार्य चयनित थे, इसमें एक इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू के आधार पर चयनित प्राध्यापकों को यहाँ पर प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसमें सभी प्राध्यापक चयनित हैं, इसमें प्राध्यापकों की भी एक चयन प्रक्रिया हुई और जो चयनित प्राध्यापक थे वो इसमें यहाँ पे इस समय कार्यरत हैं और आने वाले समय में छात्रों के लिए भी विभिन्न योजनाएं शासन लेके आ रहा है, जिसमें उपस्थिति को लेकर विभिन्न योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं हैं। शासन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए शासन द्वारा काफ़ी ग्रांट्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत सारे पद भी शासन द्वारा सृजित किए गए हैं। ये जो पीएमसीओई में पद सृजित किए गए हैं, जैसे ही वित्त विभाग के द्वारा इनमें अनुमति प्राप्त होती है, इन पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी, टीचर रेशो सुधरेगा, शोध के लिए यहाँ पर शोध केंद्र स्थापित है। बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इस समय वर्तमान में इस महाविद्यालय में 17 विषयों में शोध केंद्र प्रारंभ है। नवाचार के रूप में और बिजनेस इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स के रूप में पीएमसीओई महाविद्यालय को विकसित किया जा रहा है।
0: जी मैम, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि मैम, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए कौन कौन से नए अवसर और सुविधाएं जुड़ी हैं?
1: जी, और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि पीएमसीओई बनने के बाद ऐसा क्या अलग हुआ। देखिए, पीएमसीओई बनने के बाद, जैसा मैंने आपको कहा कि बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित हुए, जिसमें कि महाविद्यालय का सृजन फाउंडेशन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, ये सेक्शन 8 कंपनी है और इसके द्वारा स्टार्टअप्स के लिए बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नवीन विषयों का यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि ये महाविद्यालय एक ऐसा महाविद्यालय है

0: जिसमें विज्ञान, वाणिज्य, कला, प्रबंधन एवं ललित कला सभी संकाय संचालित हैं। आज के दिन ये केवल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय नहीं है, आज के दिन यहाँ पे MBA भी, अभी वर्तमान में यहाँ MBA की कक्षाएं संचालित हैं, BBA है, BCA है, और माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे विशेष विषय जो कि ऑर्डिनरी विषय नहीं है, ये विज्ञान के साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस, विज्ञान के सभी विषय यहाँ संचालित है, और सभी में बहुत अच्छी छात्र संख्या है। तो इस प्रकार से ये महाविद्यालय इस प्रकार से डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे शोध और अकादमिक कार्यों को उन्नयन हुआ हो और उनको वरीयता मिल सके। इसी के साथ महाविद्यालय में चतुर्दश विद्या अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के कॉन्सेप्ट को लेकर के एक अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसमें हम भारतीय ज्ञान परंपरा पे विभिन्न विषयों के रिसर्च को करा रहे हैं। PMCOE बनने के बाद महाविद्यालय ने ISO, ये प्रदेश का पहला महाविद्यालय है, शासकीय महाविद्यालय जो ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड महाविद्यालय ये है, और शीघ्र ही हम ISO 14001:2026 जो कि पर्यावरण के लिए होता है उसे भी करवाने जा रहे हैं।
1: जी मैम, इस समय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया किस स्थिति में है, अभी तक कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और किन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की रुचि अधिक देखने को मिल रही है?
0: हाँ जी, ये महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे पास कुल मिला के 2300 सीट्स थी, और इन 2300 सीट्स में से अभी ये वाली स्थिति बन रही है कि हमारे पास 2180 एडमिशंस हो चुके हैं। तो केवल आज लास्ट चरण में हम चल रहे हैं, केवल 120 सीट्स खाली हैं, और ये वो सीट्स हैं यानी 90% से ज़्यादा एडमिशन्स हो चुके हैं। और जिन विषयों में सीट्स खाली हैं वो उर्दू, मराठी, ड्राइंग एंड पेंटिंग जैसे विषय हैं जिनमें बच्चों का रुझान कम है। बहुत अधिक रुझान जो देखने में आया है वो कॉमर्स को लेकर के देखने में आया है। महाविद्यालय में कॉमर्स की 100% सीट्स भर चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम कला संकाय में देखें तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ये इसमें बच्चों का बहुत अधिक रुझान है। कंप्यूटर साइंस में बच्चों का रुझान है। BBA में अगर हम देखते हैं तो हमारी 100% सीट्स भर चुकी हैं, 128 एडमिशन हो गए हैं। BCA में एडमिशन हो रहे हैं, MBA में अभी एडमिशन्स हो रहे हैं जो AICTE के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। तो प्रवेश की स्थिति में अभी महाविद्यालय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
1: जी मैम, अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक प्रवेश नहीं लिया है उनके लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं, क्या अभी भी किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना है?
0: जी नहीं, UG हमारा पूरा भर चुका है, स्नातक स्तर में हमारे पास कोई सीट उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा BSc में कहीं एक दो सीट्स उपलब्ध हैं, बाकी कोई भी उपलब्ध नहीं है सीट्स।
1: जी मैम, नई शिक्षा नीति के अनुरूप महाविद्यालय में विद्यार्थियों को किस प्रकार के नए पाठ्यक्रम और विषयों के विकल्प मिल रहे हैं?
0: हाँ जी, यहाँ पे हम एकेडमिक एक्सीलेंस पूरी तरह से बच्चों को दे रहे हैं और एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि सभी संकाय उपलब्ध हैं यहाँ, ललित कला से लेकर के अगर आप देखें तो कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन सभी संकाय हैं। तो छात्र अगर चाहे तो अपने रुझान के NEP की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है कि स्टूडेंट को हम एक संकाय में बांधे ना, स्टूडेंट्स अंतर संकाय संबंधों को समझे और अंतर संकाय पाठ्यक्रमों को पढ़ने की कोशिश करे, तो उसी के तहत हम यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को डिफरेंट संकायों में, जैसे एक कला संकाय का विद्यार्थी साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहा है, एक विज्ञान संकाय का विद्यार्थी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या राजनीति शास्त्र का कोर्स भी ऑप्ट कर सकता है, वर्मी कंपोस्टिंग एक ज्योग्राफी का विद्यार्थी भी पढ़ रहा है, और एग्रीकल्चर एक विज्ञान का विद्यार्थी भी पढ़ रहा है। तो सभी इस प्रकार के जो अंतर संबंध वाले इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज हैं वो हम उपलब्ध करा रहे हैं।
1: फिर मैम, आगे मैं जानना चाहता हूँ कि PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के अंतर्गत शुरू की गई नई शैक्षणिक व्यवस्थाओं से विद्यार्थियों को रोजगार और करियर के स्तर पर क्या लाभ मिलने की उम्मीद है?
0: जी, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसा मैंने आपको बोला कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की अवधारणा ही वहाँ से हुई थी जहाँ हमने शिक्षा को सीधे रोजगार के साथ जोड़ा था, जहाँ पे रोजगार का अर्थ यहाँ सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, यहाँ पे हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे विद्यार्थी रोजगार देने वाले बने, स्टार्टअप्स हों, बिजनेस इंक्यूबेशन हों। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी महाविद्यालय का जो प्लेसमेंट इस वर्ष का है उसमें हमारे विद्यार्थियों का चयन ICICI बैंक में, उसके अलावा PTM में और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी हुआ है, TCS में हुआ है, और इन कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज के अलावा हमारे विद्यार्थी सहायक प्राध्यापक जैसी प्रेस्टिजियस परीक्षा, इसके अलावा PSC परीक्षा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग परीक्षा, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा, इस सबको भी लिख रहे हैं और उसमें उत्तीर्ण हो रहे हैं।
1: जी मैम, आगे जानना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में AI, फिनटेक, अप्रेंटिस आधारित डिग्री जैसे नए क्षेत्रों में लेकर क्या

0: की जा रही है।
1: जी हाँ, महाविद्यालय PMCOE महाविद्यालय है, इसलिए इस महाविद्यालय के विद्यार्थियों को AI विद फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज जो है वो फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारे विद्यार्थी AI विद फिनटेक और AI कोर्सेज को कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी IIT दिल्ली के सहयोग से ये कोर्सेज चलाए गए और खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने AI और AI विद फिनटेक में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
0: जी मैम, विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं जैसे लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल संसाधन और अन्य अधोसंरचना में क्या बदलाव हुए हैं?
1: जी हाँ, अभी महाविद्यालय के सभी क्लासरूम मैक्सिमम कक्षाएं जो हैं वो स्मार्ट बोर्ड के द्वारा संचालित हैं। मैक्सिमम कक्षाएं स्मार्ट कक्षाएं हैं और हम विद्यार्थियों को जो शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, पेडागोजिकल टूल्स जो दे रहे हैं, उसमें हम एंश्योर कर रहे हैं कि उनको ऑनलाइन शिक्षण पद्धति भी मिले और उसके बाद स्मार्ट बोर्ड के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब के द्वारा भी ई कंटेंट महाविद्यालय के प्राध्यापकों का बना हुआ है, ई कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
0: जी मैम, महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस सुविधा सहित अन्य विद्यार्थियों केंद्रित सुविधाएं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं?
1: जी, महाविद्यालय में 2 बसेस है, ये 4 राउंड लगाती हैं और प्रति अगर हम एक देखें तो बच्चे 330 बच्चों के करीबन एक दिन में इसका लाभ उठाते हैं, प्रति दिवस बस सुविधा का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा छात्राओं के लिए कॉमन रूम, छात्र और छात्राओं दोनों के लिए रिक्रिएशन, को करिकुलर एक्टिविटीज, NSS, NCC, स्पोर्ट्स, ये सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
0: जी मैम, आज के दौर में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है, विद्यार्थियों में कौशल विकसित करने के लिए महाविद्यालय की क्या रणनीति है?
1: हाँ जी, रोजगार परक शिक्षा देने के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकसित करने के लिए महाविद्यालय का उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से एक MOU है जो उन्नति फाउंडेशन बैंगलोर के द्वारा MOU यहाँ पे एनफोर्स किया हुआ है और उस MOU के माध्यम से पिछले वर्ष भी महाविद्यालय ने 5 ट्रेनिंग पूरे साल में ऑर्गेनाइज की जिसमें छात्रों को सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में शिक्षा दी गई और ये छात्र जो है ये आगे चल करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में और कॉर्पोरेट लेवल्स में काम कर रहे हैं।
0: मैं जानना चाहता हूं कि माधव महाविद्यालय की ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखते हुए PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में नई पहचान को आप किस तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं?
1: जी हाँ, महाविद्यालय की एक बहुत ही विस्तृत पहचान है। 1890 से स्थापित हुआ ये महाविद्यालय, ये उस दौर का महाविद्यालय है जहाँ इस महाविद्यालय ने बापू नारायण राव ढेके जो थे वो प्रथम प्राचार्य थे, उसके बाद इसमें डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन इसके प्राचार्य रहे हैं। इसकी अपनी एक लीगेसी है जिसमें इस महाविद्यालय ने बहुत बड़े बड़े महापुरुष यहाँ रहे, उन्होंने पढ़ाया भी, उन्होंने पढ़ा भी और यही हमारी जिसको कहेंगे धरोहर है। पर अब जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, अब जमाना है जहाँ हम इनोवेटिव तरह से पढ़ाएं और शोध करें, इसीलिए महाविद्यालय ने चतुर्दश विद्या अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जहाँ पे हम जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वहाँ से ज्ञान लेकर एक नए शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। नए प्रकार से कैसे शोध हो सकता है, नवीन चीजों में भारतीय ज्ञान परंपरा कैसे आ सकती है वो हम देख रहे हैं। हमारी जो पुरानी धरोहर है इसको हमने अपने कुलगान के रूप में भी इसको हमने चिरस्थायी करने की कोशिश की है, हमारे कुलगान में हमने इस सबको स्थान दिया है और पुरानी धरोहर को ध्यान में रखते हुए हम नवीन जो शिक्षा की पद्धतियां हैं उनको अपनाते हुए अपने विषयों को आगे ले जा रहे हैं। अगर आप हमारा पुस्तकालय देखेंगे, हमारे पुस्तकालय में 135,000 पुस्तकें हैं और इसमें ये 135,000 पुस्तकें कुछ तो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, 1890 से हमारे पास है। महाविद्यालय की को कहना चाहिए, ये महाविद्यालय के लिए एक बहुत गर्व का विषय है कि सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय जो आज विश्वविद्यालय है वो इसी महाविद्यालय से निकला, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय जो विज्ञान के लिए है वो इसी महाविद्यालय से निकला और उसके पश्चात आज ये महाविद्यालय वापिस से विज्ञान, प्रबंधन और सारी शिक्षा यहाँ पे दे रहा है। तो हम ओल्ड टाइम्स से सीख लेकर न्यू टाइम्स में प्रवेश कर रहे हैं।
0: ग्रामीण और छोटे शहरों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय किस तरह उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रहा है?
1: जी देखिए, महाविद्यालय में सारी सुविधाएं जो शासन दे रहा है वो तो है ही, जैसे कि स्कॉलरशिप्स हैं सारी की सारी। इसके अलावा महाविद्यालय में आवास सुविधा का लाभ विद्यार्थी ले सकते हैं कि जो बच्चे गाँव से आते हैं वो आवास सुविधा का लाभ ले लेते हैं। महाविद्यालय में एक कैंपस में ही एक कन्या छात्रावास निर्मित है। कन्या छात्रावास में जो कन्याएं बाहर से आती हैं हम इस वर्ष उसको प्रारंभ कर रहे हैं कि बच्चियां उस छात्रावास में रह सकती हैं। इसके अलावा बस सुविधा है, अगर बच्चे किसी गांव से आते हुए किसी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे उतरते हैं तो वहां तक बस उनके लिए उपलब्ध है। वो बच्चे हमें नोट भी करवा सकते हैं अगर उनका कोई स्थान है तो, हम कोशिश करते हैं कि अपने जो बस के दौरे हैं उसको समाहित करें उसमें।

0: और उन बच्चों को वो सुविधा दी।
1: जी मैम, अंत में आकाशवाणी के माध्यम से आप अभिभावकों और विद्यार्थियों के मन में जो प्रवेश या नए पाठ्यक्रमों को लेकर कोई भ्रम है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: देखिए, अभी सही में ये बहुत धन्यवाद ये पूछने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ से मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो महाविद्यालय जो भी पाठ्यक्रम खोलता है, जो भी नया पाठ्यक्रम है जिसमें अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम यानी बीकॉम लॉजिस्टिक्स और रिटेल ऑपरेशंस में शामिल है, इनको लेकर बच्चों के दिमाग में कोई भ्रांति न रहे, क्योंकि ये बहुत रिसर्च के बाद खोले जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों में के लिए हमने मार्केट को रिसर्च किया होता है, हमने देखा होता है कि आज मार्केट जो है वो किस प्रकार के पाठ्यक्रमों में को पढ़ने पर नौकरियां उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर ये खोले जाते हैं। महाविद्यालय में पीएचडी धारित शिक्षक अवेलेबल हैं, महाविद्यालय के शिक्षक हाईली क्वालिफाइड हैं, महाविद्यालय में पुस्तकों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, कक्षों की कमी नहीं है, तो ये सभी चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं और ये नए पाठ्यक्रम आपको रोजगार मूलक शिक्षा की ओर ले जा रहे हैं, वहां से प्लेसमेंट्स मिलेंगे और ये पाठ्यक्रमों के साथ आप निश्चित ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिनको प्रवेश मिला है, बस मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि जिन्हें भी प्रवेश मिला है वो 75% उपस्थिति पूर्ण करें, यही मेरा आज का सबसे बड़ा संदेश है। आप महाविद्यालय में आए, 75% उपस्थिति पूर्ण करेंगे तो आप और हम दोनों ही शिक्षा के बेहतर अवसर हम उपलब्ध करवा पाएंगे और आप उनका लाभ दे सकेंगे।
1: धन्यवाद। आकाशवाणी उज्जैन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
3: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड एचआईवी टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एचआईवी एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
3: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस्ड ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
4: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
5: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: तो भाई बहनों, तभी तुमने सुनी है हमारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस माधव महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कल्पना जी से भेंट वार्ता। अब अपने फिर आए अपनी बात पे कि भाई बहनों, मालवा की जिंदगी की अगर समझना हो तो खाली किताब ढूंढ के मत खोजो, कई बार गांव की जिंदगी की सबसे सच्ची तस्वीर जो है लोकगीत उनमें मिल जाए। मालवा में लोकगीत खाली मनोरंजन वास्ते नहीं गाए, शादी ब्याह हो तो गीत, तीज त्योहार हो तो गीत, सावन की फुहार पड़े तो गीत, खेत में काम चली रही हो तो भी गीत, बेटी मायका से ससुराल जाए तो भी गीत, अने खुशी हो या मन में कोई कसक, लोकगीत हर भावना की अपनी आवाज दे है। जरा शादी ब्याह को माहौल जो सोची लो तम कि घर में जदे मेहमान जमा है, आंगन में चहल पहल से भरियो है, महिला हुनो मिली के बैठी के गीत गई रही है, कोई दुल्हन को मजाक उड़ी रियो है तो भैया कोई दुल्हा के छेड़ी रियो है, कोई आशीर्वाद दे रियो है, इन गीत हुन में हंसी भी है, अपनोपन भी है और रिश्ता उनकी गर्माहट भी है। अने बेटी की विदाई का जो गीत हुनो है भी मन को जो भाव है उके अलग ही छुई जाए है। एक तरफ बेटी का नया जीवन की खुशी होए तो दूसरी तरफ मायका की छोड़वा की कसक, माँ बाप का मन, भाई बहन को प्यार और बिछड़वा को दुख, कई सारी भावना उनके एक गीत में समझने की बहुत सारी चीज हुई जाए। तीज त्योहार का गीत हुनों में मौसम को रंग दिखाई दे, रावण आए तो हरियाली, झूला, सहेली, मायका की याद और उमंग, इन सबका रंग लोकगीत हुन में दिखाई दे। अने खेती से जुड़िया गीत हुन की बात करा तो इनमें मालवा की जो मिट्टी की खुशबू है वह साफ महसूस हुई है। किसान को जीवन मिट्टी, मौसम और मेहनत से जुड़ियो है। खेत में काम करता मनक जदे गीत गाए है तो खाली गीत नहीं गाए है, समय काटने के लिए गीत तो बिल्कुल नहीं गाएगा, वे गीत गाए है तो उनमें मेहनत जो रहे उनकी वह थकान भी है, उम्मीद भी है और अच्छी फसल भी रहे है। इकलिए लोकगीत उनके ध्यान से सुनो तो इनमें मालवा का सामाजिक जीवन की पूरी झलक दिखाई देगा। कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाए, परिवार में रिश्ता हुन की कितनी अहमियत है, गाँव उनका लोग एक दूसरा के साथ कैसे खड़ा रहे है, खेत जो जीवन है वो कितरो जरूरी हिस्सों थो, ये सब की बात जो है लोकगीत उनमें सुरक्षित रहे। और लोकगीत उनकी बात चली रही है तो हम भी क्यों नहीं तुम्हारे लोकगीत के बारे में एक और चीज बताएं कि दादी ने माँ के गीत सिखायो, माँ ने बेटी के सिखायो और यूं ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये लोकगीत पहुंचते गयो। तो इनमें खाली गीत आगे नहीं बढ़ी है, इनमें भाषा आगे बढ़ी है, संस्कार आगे बढ़िया है, रिश्ता हुन की समझ आगे बढ़ी है और मालवा की पहचान भी आगे बढ़ी है। लेकिन समय बदल तो गयो, अब तुम सोच ही रहे होगे कि आज को जो दौर है मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया को दौर है भैया, जहाँ मनोरंजन का हजार साधन है, तो सवाल यो है कि

मालवी बोली और इना लोकगीत ढूंढ के हम नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाएं, तो वो कैसे पहुंचाएंगा, अभी हमारा साथ पहुंचाएंगा, क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे लोकगीत ढूंढ सुनाए हैं, तो अब इन्हीं बात का साथ हम सुना एक प्यारो सो लोकगीत जिका बाद अपनी अपनी बात करांगा।

आगे बढ़ सकता है, संस्कृति के बचाव को माध्यम भी बनी सकता है। अने इनमें सबसे बड़ी भूमिका हुन रहेगी वह है युवा हुन की, क्योंकि युवा नई तकनीक के समझी रहा है, सोशल मीडिया चलाए है, वीडियो भी बनाए है, आज रिकॉर्ड कर सकता हो तुम मालवी में एक छोटो सा संदेश, हजार मनक हुन तक पहुंचे सकता हो। बस जरूरत यह है कि युवा अपनी बोली के लयके गर्व महसूस कर सकता है, और तुम अगर यो भी नहीं कर सकता हो तो हमारा साथ जुड़ी के मालवी का लोकगीत हुन सुनी सकता हो। तो आओ सुना एक प्यारो सो लोकगीत, जिका बाद अपने अपनी बात करा।

तो भाई बहनों, अबे घड़ी का कांटे ने भी इशारो कर दियो है कि आज को तो टेम होने वालो है, क्योंकि पानी तो बिल्कुल टेम तो पानी जैसो बीतो जाए है। अब तुम्हारे आज हमने घनी सारी जानकारी दी है और एक तुम्हारे चर्चा भी सुनी है, और हूँ आशा करूँ कि तुम्हारे आज को जो हमारे कार्यक्रम में पसंद आयो हो को, और फिर भी तुम हमारे कोई सुझाव सुधार या अनुभव लिखी के पूछाना चाहो तो तुम हमारे पूछे सकता। अब हमारा पतो है आकाशवाणी द्वारा केंद्र निदेशक विद्यापति नगर नानाखेड़ा उज्जैन, पिन कोड है हमारा 456010। और एक साथ तुम हमारा एक शुभकामना संदेश भी सुनता जाओ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो है, अगर तुम निरंतर प्रयास करोगा तो तुम्हारे सफलता की सबसे मजबूत सीढ़ी मिली जाएगी। तो भैया एक साथ जैसे तुम्हारे मालूम है कि घड़ी में बजवाड़ा है 8, हूँ भी नापी लूँ हमारी बाट, तो फिर मिलाना अगला कार्यक्रम में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वच्छता बनाई के रखो। ने तुम्हारा भाई कुलदीप शर्मा की दो विदा, राम राम, जय श्री।

FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मालवी गीतारी गूंज। रात के 8 बजने को हैं और कुछ

0: फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन, गतिशक्ति, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर, इन पे केंद्रित है। इस रूपरेखा का उद्देश्य भारत को आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं के मजबूत करना है और विकसित भारत की ओर, जैसे कहा, कि देश की यात्रा को एक तीव्र गति प्रदान करना है।
1: और ये सातों धाराएं मुझे लगता है कि अगर पूरी गति से चलनी शुरू कर दें, काफी इसमें से आगे प्रगति हो चुकी है, हो रही है लगातार, तो इसका जो फोर्स आएगा, जो बल मिलेगा देश के विकास के लिए, वो सप्तधारा से सहस्त्रधारा का बल मिल सकता है।
0: जी हरदीप, जैसे आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो सात बिंदु है या सात रूपरेखा जो खींची है इन सात धाराओं का, इन पे कार्य शुरू हो गया है, चल रहा है, अलग अलग गति है सब में, तो ऐसा नहीं है कि ये आज शुरू होगा। ये कार्यक्रम सरकार ने चलाए हैं और इसमें एक तरह से सम्मिलित तौर से, जैसे अगर आप जानते हैं कि भारत सरकार पिछले 10-12 साल से कहती है होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि पूरी सरकार एक तरह से काम करे, ना कि हर विभाग अलग काम करे।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो पहली धारा की बात कही वो मैन्युफैक्चरिंग पावर की है, मैन्युफैक्चरिंग पावर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ढले, कंपोनेंट डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक पूरी जो वैल्यू चेन है वो भारत में ही हो और दुनिया भारत के पास आए, आप इसे कैसे देखते हैं?
0: मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादकता, जैसे हम जानते हैं कि भारत में पिछले कई दशकों से इस रहा है फोकस, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का जितना होना चाहिए प्रभाव वो नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विसेज सेक्टर 50-55% GDP को कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कृषि भी है करीब 17% और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो ये हम चाहते हैं कि इस पे ज्यादा हो, क्योंकि जब तक किसी भी राष्ट्र के पास मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उत्पादक बनाने की क्षमता ना हो तो उसकी गति में, खासकर उनकी जो अर्थव्यवस्था पे, वो गति धीमी हो जाती है, और इस पे कई सालों से काम हो रहा है। इसके साथ साथ दो बहुत जरूरी है जो प्रधानमंत्री ने भी बार बार कल भी कहा और पहले भी कहे, एक तो गुणवत्ता, और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करने हो, ताकि आप देखें कि हम विश्व में जब विश्व पटल पे अपने साजो सामान रखते हैं तो आप द बेस्ट के साथ और जीरो डिफेक्ट के साथ कम्पीट करें, ताकि लोग कहें कि ये प्रोडक्ट आपने ले रहा है तो भारत जाएगी। तो इस तरह के वैश्विक मानकों में आप पूर्ण तरह से उतरे। इसमें लागत की प्रतिस्पर्धा है, अगर आप देखें 2014 में कच्चे माल और पुर्जे के लिए आयात पर ज्यादा निर्भरता के कारण लगातार ज्यादा थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिक्री हुई थी और बड़े पैमाने में उत्पादन के फायदा यानी इकोनॉमी खेल सीमित थी। इसको बदल के 26 में जब मेक इन इंडिया और PLI स्कीम जैसे नीतिगत सुधार किए तो आयात पर निर्भरता कम हुई, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ने उत्पादन की लागत कम की। तो इस पैमाने पे जिसे कहते हैं कि काम हो रहा है। जब रक्षा की ओर जाएं तो रक्षा कॉरिडोर की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग बेस हम बना रहे हैं, और जैसे मैंने कहा जो गुणवत्ता मानक है इस पे भी काफी दिया जा रहा है। आज जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा उस पे ध्यान दिया जा रहा है, साथ ही साथ ISO सर्टिफाइड चीजें प्लांट लगे, क्योंकि वैश्विक अगर आप प्रतिस्पर्धा में उतरे तो आपका उत्पाद उस गुणवत्ता के साथ हो ताकि कोई बाधा ना है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम चले तो फार्मा इंडस्ट्री एक है जो कि पिछले कई सालों से सिर्फ जेनरिक दवाइयों पे दबदबा था, लेकिन अब वो बायोटेक की ओर अग्रसर है।
1: दूसरी धारा की बात करें KV प्रसाद जी, तो वो है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। इसमें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ने की बात कही गई है, क्या है ये, पूरा विस्तार से बताएं।
0: हम सब जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब जो है सिर्फ कृषि के साथ जो वैल्यू एडेड जिसे कहते हैं कृषि के पैदावार के, तो एक तो उसके अंदर जो गुणवत्ता के अलावा उसके अंदर जो कार्य हो रहा है वो नई विधि से हो, उत्पादक तो खाद्य सुरक्षा हमारे यहाँ ठीक है, आज अनाज का इतना उत्पादन है 357 मिलियन टन का हो गया है, गेहूं के उत्पादन बढ़ा है, तिलहन के उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसमें कई सारी चीजें, बागवानी का उत्पादन बढ़ा है, पशुपालन और मत्स्य पालन पे डेयरी क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है। इसके बावजूद हमने देखा है कि आजकल विश्व में एक नई चीज है कि जलवायु के अनुकूल क्षमता पोषण के लिए, जैसे हमने मोटा अनाज अन्न का जो बदलाव दिखाया, बढ़ावा दिया सरकार ने, वो भी एक पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ एक खाद्य पद्धति और पदार्थों का उसमें मिश्रण थोड़ा बदला है ताकि लोगों का अन्न के ऊपर ध्यान जाए। इस तरह कई चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग और वैल्यूएशन जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ग्रामीण का आय बढ़ाना चाहते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ोतरी चाहते हैं तो ये एक है, कोल्ड चेन होना, मेगा फूड पार्क करना, एग्रो प्रोसेसिंग, ये सब चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे मैंने कहा जलवायु संबंधी जोखिम है, छोटे किसानों का बिखराव है, फूड प्रोसेसिंग की कमी है, तो ये सब चीजें, और कोल्ड चेन जिसे कहते हैं कि ताकि आपके पास ठंडी जगह हो जहाँ पे आपका जो पदार्थ है वो आप रख लें, खासकर फल और सब्जियां, और कुछ जो है ज्यादा दिन के बाद आप उसका प्रयोग भी ला सकते हैं हर्ष जी।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये सब जब हम करने लगेंगे तो ग्लोबल मार्केट तक भारत की जो पहुंच है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी।

0: तीसरी धारा जिसकी बात कही गई है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हमने पहले ही देखा कि पूरी दुनिया किस तरीके से मुरीद हो चुकी है भारत के यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सफलता की, और भारत से बहुत कुछ सीख रही है। अब जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीसरी धारा के रूप में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे बढ़ाना है, तो हमें इसे कैसे लेना चाहिए, कैसे समझना चाहिए?
1: हम सबको ज्ञात है कि इसी साल के शुरुआत में भारत में AI मिशन जो 2025 में लॉन्च हुआ था, एक बहुत बड़ा कृत्रिम इंटेलिजेंस का हमने यहाँ पे बहुत बड़ा सर्विस समिट किया था, तमाम सारे विशेषज्ञ आए थे। और ये ऐसा युग है, पूरी दुनिया जूझ रही है इसे, AI के ऊपर एक प्रतिस्पर्धा है, विश्व के बड़े राष्ट्र इसमें अग्रसर है। तो भारत के पास, सब जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा पूल है और भारत के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है दुनिया में उनका लोहा मानते हैं। तो ऐसे में भारत भी चाहता है कि देश में ही इसका विकास हो। सिर्फ AI तो एक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका आपने विशेष उल्लेख किया है, UPI इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी जगह काफी राष्ट्रों के साथ बात हुई है कि वहां के राष्ट्रों के साथ आपके पेमेंट UPI के जरिए हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जो साइंस में जो होता है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये भारत का एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन रहा है विश्व में, और इसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है ताकि पीयर रिव्यूड साइंटिफिक पब्लिकेशन आए इन चीजों में। और हमारे जो डॉक्टरेट है, जो ग्रेजुएट है, ऑलरेडी हमारे पास सबसे बड़ा साइंटिफिक पूल माना जाता है। और एक खास विशेष ध्यान इस पे दिया जा रहा है कि पेटेंट और इनोवेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि पेटेंट जिसके पास है, अमेरिका का लोग मानते हैं लोहा या चीन का मानते हैं तीन, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी तेज से विकास किया है और उसमें पेटेंट लेके वो उसी पे टेक्नोलॉजी पे ही वो उनका अर्थव्यवस्था पर मजबूत कर रहे हैं। तो भारत जब अपने आप को प्रतिस्पर्धा में ला रहा है और 2047 का लक्ष्य रखा है कि आप एक विकासशील राष्ट्र हो, तो ये सारे चीज उसकी तरफ कार्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्ष जी,
0: चौथी धारा जो है वो है गतिशक्ति। हमने पहले भी देखा है कि देश में तेज रफ्तार और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रेल, हाईवे, जलमार्ग सबको पिछले 10-12 वर्षों में काफी मजबूती प्रदान की गई है। जो रास्ते हम पहले 12-12 घंटे में, 14 घंटे में तय करते थे, अब वो रास्ते महज 3-4 घंटों में हम तय कर पा रहे हैं। गतिशक्ति देश को कैसे और आगे बढ़ाएगा?
1: हर्ष जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे सड़क है, आपके एयरपोर्ट है, आपके रेलवेज है, आपके जल मार्ग से जो व्यवस्था है, इसमें भी काफी है, क्योंकि जब आपके पास जल प्रबंधन और जल मार्ग और सी पोर्ट्स आपके अच्छे हो, तो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टर्न अराउंड टाइम है वो जल्दी होगा। और जिस तरह से इन बंदरगाहों का विकास हो रहा है, इसकी वजह यही है कि अगर आप विश्व में प्रतिस्पर्धा करना चाह रहे हैं, आप आयात और निर्यात में, आप विश्व के जो बड़े बड़े जो सी पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह है, उसमें देखिए, उसमें टर्न अराउंड टाइम कहते हैं, यानी कि माल लदा हुआ जहाज आया, 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उसमें से सामान उतारा, फिर सामान चढ़ाया और चल देते, क्योंकि वक्त इतना कम देते हैं। तो गति जो है इसी से मिलेगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सुविधाएं का तेजी करें। आपने फैक्ट्री तो लगा ली एक छोटे कस्बे में या गांव में, लेकिन अपना सामान जब तैयार किया, अगर उसको एक्सपोर्ट के लिए आप नहीं बेच पाए और ज्यादा वक्त लगे, तो उसमें नुकसान सबका होगा। ये इस चीजों को बहुत जरूरी है, इस पे जोर देना, और ये इसी पे ज्यादा फोकस है। हर्ष जी,
0: बिल्कुल। और बंदरगाहों की बात आपने की, प्रधानमंत्री जी का ये भी कहना है कि बंदरगाहों को केवल माल उतारने और चढ़ाने की जगह न माना जाए, बल्कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित करना भी इसका बहुत प्रमुख उद्देश्य है, जिस दिशा में हम आगे ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। पांचवी जो है धारा वो है रक्षा शक्ति। हमने देखा प्रसाद साहब की रक्षा के क्षेत्र में भारत ने पिछले 12 वर्षों में कितनी तरक्की की। पहले हम पूरी तरीके से आयात करते थे रक्षा से संबंधित उपकरण, अब ना सिर्फ वो आयात कम हुआ है, बल्कि अब कई देशों को तो भारत निर्यात करने लगा है। क्या कहते हैं आप?
1: जी हर्ष जी, अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूं, 2014-15 में हमारा जो है स्वदेशी प्रोडक्शन है वो करीब 46,000 करोड़ था, वो 2025-26 में 1,78,00,000 करोड़ हो गया है। तो ये दिखाता है जो मेक इन इंडिया का जो कार्यक्रम है, आत्मनिर्भर भारत की सफलता दिखाता है, जिसमें आपने कहा एक्सपोर्ट्स की बात की, इसमें भी उछाल आया। डिफेंस एक्सपोर्ट 2013-14 में कोई 686 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर यानी 2025-26 में 38,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, और 80 से ज्यादा देशों तक हमारा ये सामान बाहर जाता है। तो भारत एक, जिसे कहते हैं, मिसाइल हो, रडार हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, नेवल सिस्टम हो, इस तरह की चीजों का अब हम आगे भेज रहे हैं, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी है। इसका भी एक आंकड़ा दें, जिसमें इस साल 2026-27 में करीब 30,000 करोड़ आवंटित किया गया है, और 25% हिस्सा स्टार्टअप को दे रहे हैं, ताकि नए लोग इसमें, आईडेक्स का एक प्रोग्राम जो भारत सरकार ने चलाया जिसमें स्टार्टअप्स शामिल है, ये इनोवेशन हो और इसमें तेजी पहुंचे। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर करीब 74,000 करोड़ का निवेश आया है। तो ये सब चीज दिखाता है कि एक तरह से हम, जैसे आपने शुरुआत में

0: निर्भरता है बहुत ज्यादा। आज भी भारत जो है काफी साजो सामान खरीदता है विशेषकर रक्षा के लिए, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरा रास्ता भी खोल रहे हैं। जैसे मैंने आंकड़ा भी आपको दिखाया कि हम इस में मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, और अब जो लेटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर खबर 2 दिन पहले भी आई है कि जो हम एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट को लेकर जो इंजन तैयार होने वो भारत में ही तैयार करने की एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है।
1: और जो छठी धारा है वो ग्रीन इकोनॉमी और ब्लू इकोनॉमी, इसमें अब तक हमने क्या प्रगति की है और आगे हमें क्या करना चाहिए?
0: ग्रीन इकोनॉमी की बात करें तो सबसे बड़ा है नेशनल सोलर मिशन, और साथ ही साथ भारत और फ्रांस ने एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर एक परिकल्पना कल्पनी, जिसमें करीब 70 से 80 ज्यादा देश इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो इक्वेटर है उसके आसपास इतने रेडियस तक जो राष्ट्र हैं, और भारत ने अब जैसे है 70 गीगावाट से ज्यादा इंडस्ट्रियल सोलर कैपेसिटी हासिल कर ली है, जो 2030 तक 5000 गीगावाट, और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी की ही है एक तरह से जिसके ऊपर दारोमदार है। और साथ ही साथ एक फेम स्कीम लॉन्च किया है जिसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाकर उनका निर्माण करे, और 2015 में शुरू किया एक प्रोग्राम था इलेक्ट्रिक वाहनों का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आज हम जानते हैं कि ईवी के ऊपर भारत सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि आप खरीदे ईवी व्हीकल, अलग अलग जगह चार्जिंग पॉइंट है। ग्रीन इकोनॉमी इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा प्रतिस्पर्धा के दौर में विकासशील राष्ट्र आप पे मापदंड लगाते हैं कि नहीं आप पोल्यूशन कम कीजिए, आप इस पे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कम कीजिए, एनर्जी पे खर्चा अलग कीजिए, और इसी वजह से हम कोयले की ऊर्जा से नहीं, तो ये सब है। ब्लू इकोनॉमी की जहां तक बात है, सागरमाला प्रोग्राम जो हमारा फोकस है, समुद्री व्यापार की क्षमता की जो हम बात कर रहे हैं, और डीप ओशन मिशन जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में बताया था कि किस तरह से हमने कई नो गो एरियाज को खोल दिया है।
1: जी, और प्रसाद जी, भारत के पास तो इतनी विशाल समुद्री तटरेखा है, महासागर है, तो हम मत्स्य पालन और समुद्री पर्यटन की संभावनाओं को पूरी तरीके से इसका दोहन कर सकते हैं। और साथ ही जो 7वीं धारा है वो है भारत का सॉफ्ट पावर, यानी योग, हस्तशिल्प, भारतीय संस्कृति, सिनेमा, VFX, एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कॉन्टेंट, जिसमें हम पहले से ही काफी आगे बढ़े हुए हैं वैश्विक पैमाने पर, और अब और आगे बढ़ेंगे आने वाले वर्षों में। केवी प्रसाद साहब, आपका आकाशवाणी से जुड़ने और बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सप्तधारा से विकसित भारत की विकास यात्रा को मिलती नई गति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप 0।
3: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की प्रस्तुति है आकाशवाणी जबलपुर की।
4: प्रस्तुत है समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर आधारित है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योग

अन्न केवल उदर पोषण का साधन नहीं है, बल्कि जीवन की वह संजीवनी है जो आत्मा को स्पंदित रखती है। जब विपदा के घनघोर बादल छाते हैं, तब एक भूखे पेट की आह संपूर्ण मानवता को झकझोर देती है।

इसी पीड़ा के अंधकार को चीरकर करोड़ों देशवासियों की व्यथा को हरने और उनके भाग्य का सूर्य उगाने का महासंकल्प है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY। ये योजना भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करती है। ये योजना COVID-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में आरंभ की गई। शुरुआत में केवल कुछ माह के लिए चलाई गई इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए यानी दिसंबर 2028 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। PMGKAY योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ हितग्राहियों यानी अंत्योदय अन्न योजना AAY अंतर्गत आने वाले परिवार और प्राथमिकता परिवार यानी कि PHH को पूर्व से ही संचालित पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की उचित मूल्य की दुकान

0: जिसका पीले रंग के कार्ड होते थे, दूसरे होते थे नीले रंग के कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड। तो दो प्रकार के राशन कार्डों पे हितग्राहियों को राशन वितरण किया जाता था। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, जिसके तहत हमें अधिक से अधिक जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना था। तो पहले दो श्रेणियों में राशन कार्ड बनते थे, उन्हीं को केवल राशन वितरण था, लेकिन 2013 के बाद 28 श्रेणियां आ गई हैं, जिसमें पहली श्रेणी तो अंत्योदय परिवारों की है, उसके अतिरिक्त 27 नई श्रेणियां और शामिल हो गई ताकि अधिक से अधिक परिवार लाभान्वित हो सकें। 27 श्रेणियां मैं आपको बताना चाहूँगी, जिसमें बीपीएल कार्ड भी शामिल है, वन अधिकार पट्टाधिकारी होते हैं, भूमिहीन कोटवार शामिल हो गए हैं, एससी परिवार, एसटी परिवार, ऐसे परिवार जो कर्मकार मंडल के पात्रता रखते हैं, बंद पड़ी मिलों के श्रमिक हैं, बीड़ी श्रमिक हैं, साइकिल रिक्शा वाले हैं, फेरी वाले हैं, घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं, रेलवे में पंजीकृत कुली हैं, केस शिल्पी हैं, अन्य प्रकार की, इस प्रकार की 27 और श्रेणियाँ शामिल कर ली गई ताकि अधिक से अधिक परिवार राशन प्राप्त कर सकें। और जब खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू हुआ, उसके बाद हमारे राशन कार्ड बंद हो गए, पात्रता पर्चियां चालू हो गई। पात्रता पर्चियां 28 श्रेणियों में बनने लगी और इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहली श्रेणी होती है अंत्योदय परिवार की पर्ची, जिसमें पीले राशन कार्ड वालों को अंत्योदय की पर्ची जारी की जाती है। बाकी 27 श्रेणियों को नाम दिया गया है प्राथमिकता परिवार की श्रेणी। तो अब दो प्रकार की श्रेणी में पात्रता पर्ची जारी होती है, अंत्योदय परिवार और प्राथमिकता परिवार की श्रेणी।
1: माँ, आज स्कूल में PNG के AY का नाम सुना, ये योजना सच में हमारे लिए भी है क्या?
2: हाँ बेटा, ये योजना कोविड के समय शुरू हुई थी, जब बहुत से लोगों का काम रुक गया था, तब सरकार ने जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त राशन देना शुरू किया ताकि कोई भूखा ना सोए।
1: तो मतलब हमें हर महीने जो गेहूं और चावल मिलता है वो इसी योजना की वजह से है?
2: बिल्कुल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने मुश्किल समय में हमारी मदद की और आज भी ये योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए सहायक है।
1: अच्छा, मुझे तो लगता था राशन ऐसे ही मिलता है।
2: नहीं बेटा, ये सिर्फ राशन नहीं, भरोसा है। ये सपना है सशक्त संपन्न भारत का, ये सपना है अन्नपूर्ण भारत का।
3: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कई विशेषताएं हैं, लेकिन 5 ऐसी विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। पहली और सबसे प्रमुख विशेषता है मुफ्त खाद्यान्न। जहां पूर्व में गरीब परिवारों को सब्सिडी दर पर यानी 2 रुपए और 3 रुपए में अनाज मिलता था, वहीं अब इस योजना में ये निःशुल्क कर दिया गया है, यानी लाभार्थी को कोई शुल्क नहीं देना होता। दूसरी विशेषता है पोषण सुरक्षा। फोर्टिफाइड चावल यानी पोषक तत्वों से युक्त चावल के वितरण के कारण एनीमिया और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी की समस्या में मदद मिलेगी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। तीसरी विशेषता है आर्थिक सुरक्षा। गरीब तबके के परिवारों पर इस योजना के कारण आर्थिक बोझ कम होता है, जिससे हुई बचत से इन परिवारों के घरेलू बजट का उपयोग अन्य जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर पर खर्च किया जा सकता है। चौथी विशेषता है पोर्टेबिलिटी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी ONORC के तहत हितग्राही परिवार देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशन प्राप्त कर सकता है, जो कि प्रवासी श्रमिकों के लिए बहुत उपयोगी है। और 5वीं विशेषता है इस योजना की व्यापकता। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसकी विश्व मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी प्रशंसा और सराहना की है। ये योजना लगभग 81 करोड़ 35 लाख भारतीयों को लाभान्वित कर रही है। यदि जबलपुर जिले की बात की जाए तो आइए इस योजना के हितग्राही परिवारों की संख्या और उचित मूल्य के राशन दुकानों की संख्या के बारे में भी जान लेते हैं।
0: हमारे जबलपुर जिले में राशन दुकानें संचालित हैं 986 राशन दुकानें, जिसमें से 421 राशन दुकानें शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही हैं और 565 राशन दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रही हैं, जिसमें अंत्योदय परिवार के जो पात्रता पर्ची जा रही हैं वो 41,970 परिवारों को, पीले राशन कार्ड वालों को अंत्योदय परिवार की श्रेणी में पात्रता पर्ची जारी है। बाकी 27 श्रेणी जिसे हम प्राथमिकता श्रेणी कहते हैं, उसमें 3,47,324 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी है। इस प्रकार जिले के 3,89,294

0: वे परिवार राशन से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें सदस्य संख्या है 14,45,205। इतने सदस्य जबलपुर जिले में राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। जबलपुर जिले में राशन दुकानें जो संचालित हो रही हैं, उससे संलग्न जितने परिवार हैं, परिवार के मान से जबलपुर जिले को आवंटन जारी किया जाता है। ऑनलाइन मोड में भोपाल स्तर से जनरेट होता है आवंटन। जबलपुर जिले के लिए अनुमानित लगभग हर महीने 6,250 मैट्रिक टन लगभग गेहूँ जारी किया जाता है। 1725 मैट्रिक टन के करीब चावल का आवंटन जारी होता है।
1: इस योजना को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। जबलपुर जिले में संचालित कुल उचित मूल्य राशन दुकानों में 176 उचित मूल्य की राशन दुकानें महिला स्वसहायता समूह की बहनों द्वारा संचालित की जाती हैं, जहां एक देश एक राशन कार्ड यानी ONORC के अंतर्गत PMGKAY का लाभ इसके सभी हितग्राहियों तक पहुंचाने में एक बड़ी पहल रहा है। वहीं EPOS सिस्टम ने वितरण प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। EPOS आधारित वितरण ने पारदर्शिता तो बढ़ाई ही है, साथ ही दुरुपयोग की गुंजाइश को एकदम घटा दिया है।
0: जो राशन वितरण होता है वो पात्रता पर्ची बनवानी पड़ती है किसी भी हितग्राही को। 28 श्रेणी में पात्रता पर्ची बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति जो इस 28 श्रेणी से संबंधित दस्तावेज रखता है, तो ग्राम पंचायत स्तर पे वो अपने ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक से मिलता है। रोजगार सहायक इन 28 श्रेणियों में से अगर उसके पास पात्र दस्तावेज पाया जाता है तो वो उसको राशन मित्र पोर्टल पे स्वीकृत कर देता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में अगर पात्रता पर्ची किसी हितग्राही को बनाना होता है तो वो अपने जोन में जाता है, नगर निगम जोन में, और वहाँ जाके 28 श्रेणी में से अगर किसी श्रेणी में पात्रता रखता है तो वो उसे राशन मित्र पोर्टल पे स्वीकृत करते हैं। जैसे ही ग्राम पंचायत या जोन स्तर से पात्रता पर्ची के लिए स्वीकृति आती है तो वो अप्रूवल के लिए फूड ऑफिस में भेजा जाता है। फूड ऑफिस द्वारा उसे अप्रूव किया जाता है। अप्रूव करके भोपाल स्तर से उसकी पर्ची एक महीने में जनरेट हो जाती है। पर्ची बनाने के लिए उसे सबसे जरूरी दस्तावेज होते हैं कि उसके पास समग्र परिवार ID हो, 28 श्रेणियों का कोई दस्तावेज हो, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड अनिवार्य है। जब तक सभी सदस्यों के आधार कार्ड नहीं होता और उनका EKYC नहीं होता है तो पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हो पाती है। पात्रता पर्ची एक महीने में जनरेट हो जाने के पश्चात वो दुकान जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है। सभी राशन दुकानें हमारी ऑनलाइन मोड पर संचालित होती हैं। सभी राशन दुकानों में POS मशीन है। मशीन के आधार पर ही उनके आधार ऑथेंटिकेशन पर उनको राशन वितरण किया जाता है। जब वो पर्ची लेकर जाते हैं तो अगर अंत्योदय परिवार की पर्ची है तो उसे 35 किलो राशन प्रतिमाह दिया जाता है। 35 किलो में उसे 30 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल प्राप्त होता है। प्रतिमाह 35 किलो मिलेगा केवल अंत्योदय परिवार की पर्ची पर। अगर प्राथमिकता परिवार की पर्ची है तो प्राथमिकता परिवार में सदस्य के मान से राशन वितरण किया जाता है। एक सदस्य को 5 किलो की पात्रता होती है, जिसमें 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल होता है। अगर घर में 5 सदस्य हैं तो उसे 25 किलो मिलेगा। घर में अगर 4 सदस्य हैं तो उसे 20 किलो की पात्रता रहेगी। गेहूँ और चावल फ्री में होता है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सभी राशन दुकानों से राशन POS मशीन के माध्यम से ऑनलाइन वितरण होता है। हितग्राही को अपना फिंगर POS मशीन पर लगाना होता है। चूंकि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना भी जारी है, हितग्राही जिस जिले में जहाँ भी जगह पर रह रहा है पास की किसी भी राशन दुकान में जाकर राशन प्राप्त कर सकता है अपने समग्र ID पर।
2: मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया और आज देखिए हमारे इन प्रयासों की तारीफ दुनिया में हो रही है।
1: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का सामाजिक आर्थिक प्रभाव गहरा है। परिवारों का मासिक खर्च घटता है, घरेलू बचत बढ़ती है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च की गुंजाइश बनती है। ये योजना संकट के समय सुरक्षा चक्र बनकर उभरी और अब सतत विकास के पथ पर एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। जब एक राष्ट्र अपनी कमजोर कड़ियों को पोषित करता है तब वो न केवल सहानुभूति दिखाता है बल्कि अपने भविष्य को भी मजबूत बनाता है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक मानवीय पहल है, सरल, सशक्त और स्थायी। ये योजना बताती है कि नीति निर्माण केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि जीवन को संवारने का कार्य है। जब थाली में अन्न सुरक्षित होगा तभी समाज की आत्मा संतृप्त और जीवन समृद्ध होगा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसी संतृप्ति और समृद्धि

0: अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर आधारित था। वाचक एवं प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
1: FM 102.5 MHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र। रात के 8:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

नमस्कार, फिल्म संगीत में मैं हूं आपका साथी आदेश शिंदे, और मैं एक बार फिर लेकर आया हूं आपकी चहेती प्रस्तुति फिल्म संगीत, जिसमें अगले 15 मिनट तक हम आपके साथ बिताएंगे कुछ ऐसे पल जो पुराने जमाने की मिठास लिए हुए हैं। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं को नहीं मानते, वो दशकों बाद भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने अपने जमाने में लगते थे। शायद इसलिए क्योंकि उनमें बसी भावनाएं इंसानी दिल की सबसे सच्ची गहराइयां हैं। इंतजार, अकेलापन, मुलाकात और साथ निभाने का वादा। आज के इस विशेष अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही कालजयी गीत, जो हमें ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो अकेलेपन से शुरू होकर अनजानी मुलाकात से गुजरते हुए आखिर में साथ निभाने के मीठे वादे पर जाकर ठहरेगी। तो आइए इस भावनाओं से भरे संगीत में सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा दौर भी आता है जब चारों तरफ सन्नाटा हो, दिल किसी का इंतजार तो कर रहा होता है पर खुद दिल भी नहीं जानता कि आखिर किसका रास्ता देखा जा रहा है। ऐसे में मन खुद से ही सवाल करने लगता है कि जब न कोई अपना है न कोई पराया, तो फिर ये बेचैनी किसकी याद में है। यही वो एहसास है जो हमारा पहला गीत बड़ी गहराई से बयां करता है। किशोर कुमार की सदाबहार आवाज, आरडी बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी के शब्द, इन तीनों ने मिलकर इस गीत को एक ऐसी कशिश दी है जो आज भी सुनने वालों को भीतर तक छू जाती है। प्रस्तुत है फिल्म जोशीला का ये गीत।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या
2: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV/AIDS जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
3: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: दोस्तों, कैसा लगा ये गीत? इंतजार का ये दर्द तो हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी आता ही है, लेकिन दोस्तों कभी कभी उसी राह पर चलते हुए बिना किसी उम्मीद के कोई अनजाना सा साथी मिल जाता है और वो मुलाकात इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि पूरी जिंदगी की कहानी ही बदल जाती है। रात ढलती जाती है, चिराग बुझते जाते हैं, फिर भी वो एक पल दिल में हमेशा के लिए ठहर सा जाता है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में यही एहसास फिल्म पाकीज़ा के इस गीत में बड़ी नज़ाकत से पिरोया गया है। गुलाम मोहम्मद के संगीत और कैफी आजमी के शब्दों ने इसे हिंदी सिनेमा का एक अमर गीत बना दिया है।

दोस्तों, कोई मुलाकात चाहे कितनी भी अधूरी क्यों न लगे, अगर उसमें सच्चाई हो तो वो एक दिन साथ निभाने के वादे में बदल जाती है। और भारतीय संस्कृति में जब बात इस वादे को पूरी तरह अपनाने की आती है तो वहां विवाह का वो पावन बंधन याद आता है जहां दो जीवन एक हो जाते हैं। अपने साथी का हाथ थाम कर पूरी दुनिया के सामने ये कहना कि अब यह

का स्वीकार किया जा चुका है। यही तो है प्रेम की सबसे सुंदर परिणति। फिल्म नया दौर का ये गीत उसी अपनेपन को, उसी सहज विश्वास को बड़ी सादगी में व्यक्त करता है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, ओपी नैयर का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल इस गीत में एक अनोखी मिठास खोल देते हैं।

और अब दोस्तों हम इस भावनाओं भरे संगीतमय सफर के सबसे गहरे पड़ाव पर हैं। फिल्म केदारनाथ का ये गीत जो प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जहां प्रेमी कहता है कि तुम्हारी नाराजगी मुझे अत्यधिक तकलीफ देती है, फिर भी मैं तुम्हारे प्यार पर अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार हूँ। ये प्रेम किसी शिकायत का मोहताज नहीं, ये तो वो समर्पण है जो हर सीमा को पार कर जाता है। आइए सुनते हैं यह गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म केदारनाथ का यह गीत, जिसे अपने मधुर स्वर दिए थे अरिजीत सिंह ने। आज के फिल्म संगीत में हमने दोस्तों महसूस किया कि एक खूबसूरत सफर अकेलेपन की तड़प से शुरू होकर एक अनजानी मुलाकात की मिठास से गुजरता हुआ और आखिर में साथ निभाने के पावन वादे पर पूरा होकर पूरा होता है। यही पुराने गीतों की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो आज भी हमें अपनी ही जिंदगी की कोई कहानी सुनाते नजर आते हैं। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आपके मित्र आदेश शिंदे को दीजिए अनुमति। सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:44 और ठीक 55 सेकंड हो चुके हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
3: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
2: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
3: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
2: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों

0: और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
1: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economies and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री

0: प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
1: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैट

0: that stumps against host Sri Lanka on day two of the first test match of the series at the Galle International Stadium. Prasidha Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw stumps this evening. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-all draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया और बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तबकात की बहबूद और तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब शाह आज राजस्थान के शहर अलवर में रियासत के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने वाजे किया कि 2014 से 2026 तक मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, ने कम से कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा किया है।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: जनाब शाह ने देही मईशत की काया पलट करने में डेयरी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि

0: को कोविड वैक्सीन फराहम की। उन्होंने 2014 से आला तालीम की तौसी को उजागर करते हुए कहा कि आला तालीम में खवातीन की शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने उभरते हुए शोबाजात मसलन मसनूई जहानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, रोबोटिक और हयातियाती टेक्नोलॉजी की अहमियत को भी उजागर किया। नायब सदर ने कहा कि तहकीक की असल कामयाबी उसी वक्त है जब इससे माशरे को फायदा पहुंचे। महसूलाती इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट DRI ने भारत में जनूब मशरकी एशियाई सुपारी यानी छालिया दरामद करने में मुलविस एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क सुपारी को बांग्लादेश की पैदावार बताकर जनूबी एशियाई आजाद तिजारती इलाके साफ्टा के तहत धोखाधही से ड्यूटी में रियायत के फवायद हासिल कर रहा था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: DRI ने बताया कि तहकीकात के दौरान हासिल करदा मालूमात से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधही के जरिए SAFTA के फवायद हासिल कर रहे हैं। ये गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरे जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में पैदा होने वाली सुपारी यानी छालिया दरामद करते थे, लेकिन उसे बांग्लादेश की पैदावार बताते थे। इत्तलात की बुनियाद पर DRI ने कोलकाता और विशाखापट्टनम में दरामदकार, कस्टम ब्रोकर्स और IES होल्डर्स से वाबस्ता कई मकामात पर बैक वक्त तलाशी की कार्रवाई की। इस दौरान कई ऐसे दस्तावेजात और दीगर शवाहिद मिले जिनसे साबित होता है कि सुपारी दर हकीकत जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से दरामद की गई थी। DRI के अफसरान ने तकरीबन 75 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। शुबह है कि यह गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम है। इसके अलावा तकरीबन 160 मेट्रिक टन सुपारी की एक खेप जब्त की गई है। मस्कुरा गिरोह के दीगर मेंबरान की शिनाख्त और उससे हुए नुकसान का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगाई मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की सूरत हाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आइंदा दो दिनों के लिए जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आसाम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल शदीद बारिश होने की तवक्को है। उड़ीसा में ताजा सैलाब आने का अंदेशा है क्योंकि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के हल्के में इजाफा होने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके मुतासिर हुए हैं, जबकि 237 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। मुतासर इलाकों में तकरीबन 293 राहती कैंप काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासर अजला में हुक्काम को हिदायत दी कि वो ड्यूटी पर रहें और अपनी छुट्टियों को मनसूख कर दें। आकाशवाणी न्यूज भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीब रहमान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जमैका के वजीर आजम एंड्रू हॉलनेस का भारत के यौम आजादी के मौके पर मुबारकबाद देने के लिए शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत जमैका के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की दिल से कदर करता है, नेक खुसूसी और करीबी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तई पुरुम्मीद है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में कौमी अनुभव अवार्ड्स 2026 तफवीज करेंगे। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब में पेंशन मित्र पर एक किताबचा और मुल्कगीर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLS मुहिम के लिए 5 रहनुमा खतूत भी जारी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर सुंगल टनल को आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका तवील अरसे से इंतजार था। ये टनल राजौरी और पुंछ के दो जिलों नेज मुत्तसिल इलाकों के साथ कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बेहतर करेगी। सरहदी शाहराहों की तंजीम के जरिए तामीर करदा इस टनल को पहले 22 अगस्त को आवाम के लिए खोलने का प्रोग्राम था, अलबत्ता इसे यौम आजादी के तोहफे के तौर पर वक्त से पहले ही खोल दिया गया है। यह सारफीन को राहत फराहम करेगी और खित्ते में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कालीधर रेंज से होकर गुजरने वाली 2.79 किलोमीटर तवील ये अहम टनल तामीर की गई है। ये मौजूदा रूट के मुश्किल हिस्से को बाईपास करेगी और तवक्को है कि इससे तकरीबन 13 किलोमीटर का सफरी फासला कम होगा। इसके अलावा ये सफर

0: वक्त में भी नुमाया कमी करेगी। अखनूर राजौरी पुंछ शाहराह पर सड़क चौड़ा करने और अपग्रेडेशन का काम तेजी के साथ जारी है, जिसके बायस ये टनल खोली गई है। सुंगल टनल की तामीर तकरीबन 600 करोड़ रुपए की तखमीनी लागत से की गई है। अब जबकि इस टनल को अवामी नकलो हरकत के लिए खोल दिया गया है, इस पर कुछ तामीरी और हतमी काम किया जा रहा है। फिलहाल सिर्फ छोटी गाड़ियों को इस टनल को इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। भारी गाड़ियां, बसें और साजो सामान लाने ले जाने वाली गाड़ियों को अभी तक इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि इस पर अभी कुछ काम होना बाकी है। भारी गाड़ियों की नकलो हरकत को इस काम के पूरे होने के बाद आने वाले महीनों में आमदोरफ्त की इजाजत दी जा सकती है। आकाशवाणी न्यूज जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: यूक्रेन और रूस ने आज एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिसमें दोनों जानिब कम से कम 11 अफराद हलाक हुए हैं। यूक्रेन ने इस जंग में अपने सबसे बड़े फजाई हमलों में से एक में पूरे रूस में सैकड़ों ड्रोन से हमला किया, इनमें 6 अफराद हलाक हो गए। 3 कस्बों पर हमलों के बाद रूस के जनूब मगरबी खित्ते में 5 अफराद हलाक हो गए। 150 से ज्यादा ड्रोन्स के हमलों में बहुत से घर और एक रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि जंगल में आग भड़क उठी है। मास्को खित्ते में एक निजी घर पर यूक्रेन के ड्रोन के एक हमले में 48 साल का शख्स हलाक हो गया। मास्को के गवर्नर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यूक्रेन के हमले में एक वेयर हाउस में आग लग गई। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने रात के दौरान 822 यूक्रेन के ड्रोन्स को नाकारा बना दिया। FIH खवातीन हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में ग्रुप मरहले के मैच में चीन के खिलाफ 2-2 से सनसनी खेज ड्रॉ के साथ अपने मुहिम का आगाज किया। नवनीत ने 8वें मिनट में भारत को इब्तदाई बर्तरी दिलाई, लेकिन चीन ने 15वें मिनट में जोंग यिंग के पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल करके बराबरी कर ली। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की बर्तरी को बहाल किया। तीसरे क्वार्टर में चीन की मैनिंग ने 39वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर गोल करके स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारत और चीन पूल डी में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के साथ हैं। पूल से सरे फहरिस्त दो टीमें अगले राउंड में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में 2-2 एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में 3 भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए, जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने

0: चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डिली और गायत्री गोपीचंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर यह वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता पर काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
4: क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
5: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
6: महारानी, प्रणाम। राजमाता,
4: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
6: क्षमा चाहता हूँ राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
4: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
6: जी राजमाता।
4: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्र शाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है उसे बंदी बना लीजिए।
6: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वो 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: इलाही गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता के चर्चे हैं।
2: बहादुरी, महानता, बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है, उसे बाद में देखेंगे, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
2: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा उठने की जुर्रत करता है, हर उस राजा और राज्य को जीतना होगा जो सचमुच महान हैं या हो सकते हैं। हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना,
2: लेकिन लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा है, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
2: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहांपना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
2: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहांपना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
2: ओ, अब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया। यहाँ के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या

0: बचाने के लिए।
1: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
2: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए।
3: आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
2: जहां पनाह, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मार दी है।
3: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
2: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
3: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
4: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
2: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं। और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रही हैं।
3: भला वो किसके दम पर?
2: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
3: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
4: आलीजा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
3: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आ गया।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। कहा है कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में तोहफा क्या है?
2: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
2: जो हुक्म महारानी साहिब है।
1: जलालुद्दीन की ये जरूरत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
3: वो ऐसा ही करता है महारानी। वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
3: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहाँ लेकर आओ।
0: जो आ गया महारानी।
2: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हाँ,

0: उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
1: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
3: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
0: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा बिछवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
3: परंतु सोने का?
0: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
4: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
0: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो होगा महारानी।

0: बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलवा फरोज हो रहे हैं।
1: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह, गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
2: अंदर ले आओ।
3: प्रणाम।
2: तो तुम हो आधार?
3: जी हां जहां पना, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
2: बहुत नाम सुना है तुम्हारा।
3: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है।
2: देखे तो इस थाल में है क्या, तोहफा पेश किया जाए।
3: ये
2: क्या है? ये
3: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धुनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
2: पिंजना, वो भी सोने का। बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
4: आलीजा, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
2: वो क्या?
4: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी।
2: चुरट, लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
3: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
2: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
3: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
2: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती।

0: जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। कढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें कढ़ा चाहिए, समझे तुम?
1: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
0: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के 1000 सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान बुरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो!
3: दुर्गावती का हाथी बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। उस कुशल तीरंदाजों को ऊंचाई पर भेजो और नीचे से गोलाबारी जारी रखो।
4: जो हुक्म हुजूर। तीरंदाजों ऊपर बढ़ो।
2: हिम्मत मत हारना मेरे वीर सैनिकों। कुछ तीरंदाज ऊपर आ गए हैं, उन पर निशाना लगाओ।
4: अरे महारानी, क्या कुछ
3: हट दो।
0: पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ। जाओ।
2: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
4: नहीं महारानी,
2: जलालुद्दीन को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
4: महारानी, काफी खून बह गया है। संभालिए अपने आप को महारानी।
2: ये लो।

0: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। और सामने देखिए, वो उनके विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह, आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना चाहती है।
0: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी,
1: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा साक्ष ही है। मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोसी।
0: महारानी, महारानी, महारानी, महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।
2: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
3: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर, सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौ।

इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashvani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely traveled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the 7 chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं ओशित जाना।
1: Tonight, Ritam Sarkar is accompanied on the tabla by ओशित जाना।
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत 3 ताल में आबद्ध है।
1: Ritam Sarkar begins his guitar recital with rag malkos. With alap, jor and jhala, the composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आवत है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kahrwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शर्का से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औषित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रितम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय औषित जाना। And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: That. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला।